फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 6.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित

0: वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन।
3: मनुष्य अनादि काल से सुख की खोज में लिप्त है, परंतु आज भी सुख की वास्तविक अनुभूति से परे है। जैसे धूप के साथ छांव भी जुड़ी है, वैसे ही सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। सुख दुख में अपने को नियंत्रित कर पाता है, मनुष्य को आशावान बनाती है एवं दुख का सोचना ही मनुष्य के लिए कठिन घड़ी होती है। सुख दुख को समान समझना योगी पुरुष के लिए ही संभव है। तीन रूप हैं। प्रत्येक व्यक्ति के सुख की सीमा अलग अलग रहती है। सुख सामान्यतया शरीर, मन, आत्मा से संबंधित है। भौतिक सुख इस शरीर से संबंधित है। शरीर को सुख देने वाले संसाधनों की उपलब्धि से सामान्यतया अधिकांश को सुख मिलता है। टीवी, कूलर, फ्रिज एवं अन्य सुख सुविधाएं जो शरीर को सुख देते हैं या भौतिक सुखों की उपलब्धि है। शरीर से बढ़कर मन के सुख की परिकल्पना की गई है। किसी कार्य से मन को शांति मिले, मन को आनंद हो, यही मानसिक सुख है। जो दूसरों को सहायता करने एवं अन्य प्रयोजनों पर किए गए कार्यों से मन को सुख प्राप्त होता है। इससे बढ़कर आत्मा को सुख देने वाले कार्य जो आध्यात्मिक सुख के अंतर्गत आते हैं, योगी सन्यासी ईश्वर की प्राप्ति हेतु किए गए कार्यों में सुख प्राप्त करते रहते हैं। अतः सुख की उपलब्धि विभिन्न स्रोतों में भिन्न भिन्न ढंग से मानी जाती है। जब सुख होता है तो दुख भी परिभाषित रहता है। सुख की कमी दुख का बोध कराती है। सुख विभिन्न प्रकार से व्यक्ति को अलग अलग होता है। दुख भी सुख की प्राप्ति न होने देने में लगता है। दुख के समय व्यक्ति अपने प्रिय का स्मरण करता है, सुख में उन्हें भूल जाता है, अपनी प्रसन्नता में फूला नहीं समाता। कवि ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख के क्षण में व्यक्ति ईश्वर तक को भूल जाता है। सुख जब सुख होता है तो दुख भी परिभाषित रहता है। सुख की कमी दुख का बोध कराती है। जिस प्रकार सुख विभिन्न प्रकार से व्यक्ति को अलग अलग होता है, दुख भी सुख की प्राप्ति न होने देने में लगता है। दुख के समय व्यक्ति अपने प्रिय का स्मरण करता है, सुख में उन्हें भूल जाता है, अपनी प्रसन्नता में फूला नहीं समाता। कवि ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख के क्षण में व्यक्ति ईश्वर तक को भूल जाता है। सुख प्राप्ति हर वर्ग के लिए अलग अलग होता है। विद्यार्थी को सुख प्रश्नों को हल करने से मिलता है, डॉक्टर को मरीज के ठीक होने पर, शिक्षक को छात्रों की सफलता पर, परिवार को संबंधित लोगों की प्रगति पर, पिता को पुत्र की प्रगति से सुख मिलता है। सीमा नहीं है। भौतिक सुखों से अधिक मानसिक एवं आत्मा को सुख देने वाले कार्यों को महत्व दिया जाता है। चिंताओं से रहित व्यक्ति सबसे अधिक सुखी होता है।
2: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे नितिन मुकेश द्वारा गाए भजनों को।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नोवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नोवेलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नोवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नोवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नोवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और कार्यक्रम वंदना में आज आप सुन रहे हैं नितिन मुकेश द्वारा गाए भजनों को।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: भक्ति संगीत की कार्यक्रम वंदना में आज आपने सुना नितिन मुकेश द्वारा गाए भजनों को, और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:30 हुए, लीजिए सुनिए कृषि संबंधी जानकारी कार्यक्रम कृषि चर्चा में, जिसमें आज चर्चा का विषय है खरीफ फसलों की आधारभूत तैयारी एवं प्रबंधन। वार्ताकार हैं हरीश कुमार राठौर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी रायगढ़।
1: किसान भाइयों नमस्कार। खरीफ पूर्व तैयारी के संबंध में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अभी हमारा आगामी खरीफ शुरू होने वाला है, तो हम कैसे खेती को अपना लाभदायक बनाएं, उसके लिए हमको पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसान भाई ग्रीष्मकालीन जुताई को प्राथमिकता देते हुए ग्रीष्मकालीन जुताई कर सकते हैं। उसके बाद में किसान भाई जो है ग्रीष्मकालीन जुताई करने के बाद में मानसून की स्थिति का जायजा ले सकते हैं कि मानसून आगामी वर्ष में किस प्रकार रहने वाला है, उसको देख सकते हैं। उसके बाद में किसान भाई चाहें तो अपना जो है पहले से तैयारी भूमि का तैयारी कर सकते हैं, भूमि को कैसे तैयार करके रखना है, और हमको जो है जिस प्रकार की हमारी मिट्टी है उस प्रकार से हमको खेती का प्लानिंग करना पड़ता है कि हमको कौन सा फसल लेना है, कौन सा किस्म लेना है। उसके बाद में हमको जो है बीज की व्यवस्था पहले से करना पड़ता है। तो हम जो है जैसे ही हमको पता चलता है कि हमारा फसल हम धान का फसल लेंगे या उड़द मूंग लेंगे या मक्का लेंगे, उसके बीज के लिए आप जो है तुरंत ही उसमें विभाग से संपर्क कर सकते हैं कि कौन कौन से नए किस्म के बीज आए हैं और हमारे क्षेत्र के लिए कौन कौन संशोधित है, उन बीजों का भी चयन कर सकते हैं। धान में भी आज के समय में सुगंधित धान, पतला धान और बहुत अच्छे नए नए किस्म, हमारे पुराने जो किस्म थे उसका जो है म्यूटेंट करके नए किस्म बनाए हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। मक्का फसल भी किसान भाई चाहे तो ले सकते हैं, और उड़द मूंग का फसल, अरहर का फसल दलहन तिलहन में इसको ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं तिलहन में। तो जो भी प्रकार से लेना चाहते हैं उसका प्लानिंग किसान भाई को पहले ही करना पड़ता है। तो उसके बीज का व्यवस्था तत्काल किसान भाइयों को कर लेना चाहिए। अभी धान बीज का जो है सभी समितियों में भंडारण शुरू हो गया है, तो किसान भाई जो है समितियों से भी बीज जो है उठाव कर सकते हैं। उसके बाद में किसान भाई जो है बीज का व्यवस्था करने के बाद में उसका बीजोपचार हमको करना रहता है, तो बीजोपचार के लिए भी हमको जैविक तरीके से भी बीजोपचार कर सकते हैं, और बीज को छटाई करके साफ बीजों का चयन करके हम रख सकते हैं। उसके बाद में किसान भाई उसका बुनी का विधि, हमको कैसे बुनी करना है, हमको किस प्रकार से फसल लेना है, उसकी तैयारी कर सकते हैं, ताकि किसान भाई को जो है उसमें सही समय में बुआई कर सके और सही मात्रा में बीज का उपयोग हो सके, जिससे जो है फसल की स्थिति अच्छी हो और उसका जो है बीज का सही उपयोग हो सके, ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमको पूर्व से ही खाद की व्यवस्था और उर्वरक की व्यवस्था करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हम जो है जैविक खाद को जो है समय में अभी जैसे ही खरीफ का हमारा फसल लगता है उसके पहले हम लोगों को डाल करके उसको खेतों में मिलाना रहता है, तो जैविक खाद का उसको उपयोग करना रहता है, तो उसका भी व्यवस्था कर लें। यदि खुद के पास में है तो अच्छी बात है, यदि खुद के पास किसान भाई के पास नहीं है तो जो है किसी भी अन्य किसान से या बाजार से भी जैविक खाद ले सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक खाद का भी कुछ मात्रा देना पड़ता है, तो रासायनिक खाद की तैयारी के लिए आप लोगों को अग्रिम उठाव करने की सलाह दिया जाता है। जैसे बीज का अग्रिम उठाव की सलाह दिया जाता है, वैसे ही आप जो है रासायनिक खाद का भी किसान भाई अग्रिम उठाव कर सकते हैं और परमिट कटा करके जो है समिति के माध्यम से हम रासायनिक खाद का व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको ध्यान में रख करके खरीफ का तैयारी किसान भाई अभी से करेंगे, ताकि हमको जो है जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो हमको उपलब्ध पहले से रहेगा। अन्यथा क्या होता है कि हम जब जरूरत आता है तब हम उसको तैयारी करते हैं, तो हमको समय में वो बीज या वो किस्म हमको नहीं मिल पाता, और सही किस्म नहीं मिल पाता है तो हमारा जो पहले से योजना बना रहता है कि हमको ये फसल का ये किस्म लगाना है, वो सभी योजना हमारा जो है फेल हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप अग्रिम उठाव करें और सही बीज का चयन करके एक योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करेंगे, जिससे जो है आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, जिसमें चर्चा का विषय था खरीफ फसलों की आधारभूत तैयारी एवं प्रबंधन। वार्ताकार थे हरीश कुमार राठौर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी रायगढ़। इसी के साथ कृषि चर्चा अब संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी रूपरेखा जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे।

कुछ ही पलों के पश्चात यानी 6:40 पर आप सुन सकेंगे रामचरितमानस गान, 6:50 पर आप सुनेंगे देश गान, संस्कृत में समाचार 6:55 पर, 7:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, 6:40 पर होगा रामचरितमानस गान, 6:50 पर देश गान आप सुन सकेंगे। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 7:05 पर। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा का वक्त होगा 7:35 पर। गांधी चर्चा आप सुन सकेंगे 7:45 पर। समाचार प्रभा सुबह 8:00, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम इनसे मिली का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी केंद्र रायपुर से 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:00, पुनः 11:00 और 12:00। विविध भारती कार्यक्रम अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 9:55 पर, पुनः 11:55 पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर से ये समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:10 पर। 10:30 पर होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारा हाथी हमर गोट। भजन संध्या का वक्त होगा 5:10 पर। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 5:30 पर। हिंदी में समाचार शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए आप सुन सकेंगे शाम 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:45 पर। आकाशवाणी केंद्र रायपुर से ये समाचार आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीकंधा का वक्त होगा रात्रि 10:30 पर।

कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस कान की 26वीं कड़ी। गायक कलाकार है आशा भोसले एवं कविता कृष्णमूर्ति। संगीत निर्देशन है आकाशवाणी के लिए सतीश भाटिया का।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना यह है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान की 26वीं कड़ी। गायक कलाकार थे आशा भोसले एवं कविता कृष्णमूर्ति। इसी के साथ रामचरितमानस गान अब संपन्न होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:50 हुए हैं, लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश गान। इसी के साथ देश गान अब संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: षट्शत हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमन्त्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवान्। गुजरातराज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्रीशाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलम्पिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्वरक्षक क्रीडानां, अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां, विशेषतः महिलानां, निर्धनानां, बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपतिध्वजसम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किमारक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य एकत्रिंशद्दिनाङ्कपर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरलराज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेङ्गलूरुनगरे आर्ट् आफ् लिविङ्ग् फाउण्डेशन् इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशद्वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विकसमारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयन्त्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतनमुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां षट्त्रिंशदधिकैकशताधिक विधायकानां समर्थनेन कांग्रेसदलस्य पूर्णबहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीयर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तरपश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपयक्षेत्रेषु अतितापघटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य उपान्तिचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लों वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप हमें सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 में घसवर आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम और चलिए गीतों भरे संगीत से भरे इस सफ़र में, जिसमें पहली पेशकश है फिल्म कृष से और इस गीत को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। इस गीत की शब्द रचना की है नासिर फराज ने। राजेश रोशन का संगीत है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मोर नाम इंदु पटेल है, ग्राम तेलीपाली से। मैं एक गृहिणी हूँ। आज आकाशवाणी ला 90 वर्ष पूरा हो कि एक उपलक्ष्य में पूरा आकाशवाणी परिवार ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देत हूँ। आकाशवाणी सुनत मोला कई दशक बीत गए। उनमें रामचरित मानस से अपन दिन के शुरुआत करना, तेकर पाछू भक्ति संगीत, देशभक्ति गीत और देश विदेश के समाचार संग अपन स्थानीय खबर मन घरों मिल जाते। आकाशवाणी रायगढ़ ले प्रसारित हो या बाल सभा, युगवाणी, वनिता विहार, घर द्वार और सखी सहेली कार्यक्रम मोला बहुत पसंद है। मोला अलग अलग तरह के खाना बनाना बहुत पसंद है और महिला मन के कार्यक्रम वनिता विहार, घर द्वार और सखी सहेली में तो कई तरह के रेसिपी भी बताते नवा नवा, जो ला सुन के मैं बनाता और घर के मन बड़ पसंद करते। जब घर के सब अपन काम बुता में निकल जाते तेकर पाछू मैं रेडियो सुनत अपन बुता काम ला करता। एकर से मोर काम भी हो जाते और मनोरंजन भी। आकाशवाणी में हमारे प्रस्तुतकर्ता मन और बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम ले के आए। एकर से कामना के संग एक घाव फिर पूरा आकाशवाणी परिवार ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म कुछ ना कहो का गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। इस गीत की शब्द रचना की थी जावेद अख्तर ने, शंकर एहसान लॉय का संगीत था।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: ആകാശവാണി @90.
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। अगला गीत सुनिए फिल्म मेरे यार की शादी है से, जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। साथ ही उदित नारायण ने भी इस गीत को गाया है, जावेद अख्तर का लिखा ये गीत है और जीत प्रीतम का संगीत है।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: अभी आप सुन रहे थे वीर ज़ारा फिल्म का गीत, जिसे गाया था उदित नारायण ने। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा था, मदन मोहन का संगीत था। और इसी के साथ ही संपन्न होता है चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:35 हुए, लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।
1: Shut up!

संगियों स्वागत है आप मन के कार्यक्रम झरोखा में। आवाज है आप मन के संग, आप मन के संगवारी सविता। तो कार्यक्रम सुनैया सबो श्रोता संगवारी मल्ला सविता के राम राम जय जोहार। संगी व पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु पाए जाते, लेकिन पृथ्वी के संगे संग सागर में भी बहुत से जीव जंतु पाए जाते। कुछ जीव जंतु समुद्र के सतह पर पाए जाते तो कुछ होकर तली में। संगी व सागर क्षेत्र भी जमीन के जैसे बंजर और उपजाऊ होते। सागर के कुछ क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति रही थी जहाँ मछली और दूसरा जीव जंतु भारी संख्या में मिलते, तो कुछ जगह ऐसे होते जहाँ ये जीवन की संख्या बिल्कुल कम होते। आज हम चर्चा करबो सागर में पाए जाए वाला कुछ उपयोगी समुद्री जीव के बारे में। संगी और समुद्र में पाए जाए वाला जीवन में मछली एक प्रमुख हवे। मछली ले लाखों जनला भोजन मिलते और लाखों जनला काम। आर्थिक दृष्टि ले देखा जाए तो मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय हवे। आज के औद्योगिक समाज में मछली ताजा और डिब्बा बंद दोनों रूप में बेचे जाते। मछली मन ले भोजन के संगे संग जानवर मन ला चारा और उद्योग के रूप में मछली के तेल जैसे कई सामान मिलते। समुद्र ले पाए जाए वाला मोती रत्न के श्रेणी में आते। पुराना जमाना ले ही मोती के उपयोग गहना के रूप में करे जाते। ये मोती भी समुद्री जीव घोंघा ले मिलते। घोंघा के शरीर में जब कुन्हो रेत के कण चले जाते तो घोंघा एक ऊपर सीपी जैसे पदार्थ के परत चढ़ाए लगते। कुछ समय बाद ये सीप के अंदर मोती बन जाते, लेकिन एकर जीवन मुश्किल वाला होते। समुद्र में ला मछली मन खा जाते और जब धरती पर आते तो ला आदमी मन खा जाते। मोती की खोज की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ऐसे कहे जाते कि एक चीनी आदमी ला बहुत भूख लगे रहीस। अपन भूख ला मिटाए बर वह सीपी के ऊपर के परत ला खोलिस तो ला सीप के अंदर एक चमत्कार चीज मिलिस। इहर ही मोती रहीस। मोती छोटे ले लेके बड़े आकार के भी होते। मूंगा भी एक समुद्री जीव हवे। इहर कड़ा प्याला नुमा रचना में रहते। जब यह मर जाते तो तख्त प्याला नुमा रचना हार रह जाते जिला मूंगा कहे जाते। मूंगा के उपयोग अंगूठी और दूसर गहना मन में करे जाते। स्पंज भी सागर में पाया जाए वाला जीव हवे, जेकर उपयोग मानव नहाए बर और सफाई करे बर करते। आजकल कृत्रिम विधि ले भी स्पंज बनाए जाते। स्पंज के शरीर ट्यूब नुमा होते। एक शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते जेकर ले पानी जाते। जब स्पंज मर जाते तो एक शरीर के उपयोग सफाई बर करे जाते। संगी और समुद्री जीवन के खोल भी उपयोगी होते। शंख कौड़ी सीपी ये सबो हर समुद्री जीवन के खोल रही थे। पुराना जमाना ले ही एक उपयोग पूजा पाठ में करे जाते। तो सीपी के उपयोग सजावट पर करे जाते। कौड़ी के उपयोग पुराना जमाना में मुद्रा के रूप में करे जाए। खोल वाला समुद्री जीव अपन रक्षा बार शरीर के चारों ओर कड़ा कवच के निर्माण करते। जब ये जीव मर जाते तो कवच सागर के तट पर तैरे लगते और समुद्र के लहर के संग सागर के किनारा तक पहुँच जाते। तो संगी हो ये तो ही साम्राज्य के बातचीत। अब आओ सुना जाए ये गीत।

तो गीत के संग ही कार्यक्रम के समय खत्म होत हवे। अगले कार्यक्रम में फिर हुई मुलाकात होई कुछ बात। तब तक वह सबो श्रोता बहनी मल्ला सविता के राम राम, जय जोहार।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झिरोखा। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:45 हुए हैं, लीजिए सुनिए गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा में आज सुनिए शिक्षा विषय पर बापू के विचार।
1: जब जब आश्रम में झूठ बोला गया तब तब उसे महारोग समझकर दूर करने के कड़े उपाय किए गए। आश्रम में दोष करने वाले को सजा देने की नीति बिल्कुल नहीं रखी गई, यहां तक कि दोष करने वाले को आश्रम से अलग कर देने में भी संकोच रहता था। दोष न होने देने के लिए तीन उपाय किए जाते थे।

किए जाते हैं। पहला था मुख्य कार्यकर्ताओं की शुद्धि। इसके पीछे यह मान्यता रही है कि अगर कार्यकर्ता में कहीं भी दोष न हो तो आसपास का वायुमंडल शुद्ध ही रहेगा। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिकता, वैसे ही सत्य के सामने असत्य नहीं टिकता। दूसरा उपाय बुराई को प्रकट करना था। कोई असत्य आचरण करता पाया जाता तो उसे समाज के सामने प्रकट कर दिया जाता। इस उपाय को विवेक के साथ काम में लाया जाए तो परिणाम बहुत अच्छा होता है। इसमें दो सावधानियां रखने की जरूरत रहती है। एक तो भूल करने वाला खुलेआम दोष स्वीकार करे, उसमें जबरदस्ती की गंध भी नहीं होनी चाहिए। दूसरे, दोष प्रकट करने का असर दोष करने वाले पर ऐसा ना होना चाहिए कि फिर उसे शर्म ही महसूस ना हो। दोष प्रकट हुआ कि पाप धुल गया, ऐसा ख्याल पैदा हो जाए तो फिर दोष में रहने वाली शर्म नहीं के बराबर हो जाती है। जरा सा असत्य भी महारोग है, इस बात का भान सदा ही रहना चाहिए। तीसरा उपाय मुख्य कार्यकर्ता और असत्य आचरण करने वाले का प्रायश्चित के रूप में उपवास करना है। असत्य आचरण करने वाला उपवास करे या ना करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। पर मुख्य कार्यकर्ता तो जाने अनजाने में अपनी संस्था में होने वाले दोष के लिए जिम्मेदार है ही। असत्य जहरीली हवा से भी ज्यादा जहरीला और ज्यादा सूक्ष्म है। जहां मुखिया में आध्यात्मिक दृष्टि है, जहां वह जागृत है, वहां यह सूक्ष्म जहर घुस ही नहीं सकता। इसलिए अगर जहर घुसता नजर आए तो वह मुखिया के लिए चेतावनी जैसा है। उसे समझना चाहिए कि इस जहर के घुसने में कहीं ना कहीं उसका अपना भी हाथ है। मेरा ख्याल है कि जितना स्पष्ट असर रसायन शास्त्र में अमुक मिश्रणों या क्रियाओं का हम देखते हैं, उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा स्पष्ट असर आध्यात्मिक क्रियाओं का होता है। बात इतनी ही है कि हमारे पास उसे नापने के यंत्र नहीं है, इसलिए ऐसे असरों के बारे में हमें जल्दी विश्वास नहीं होता। या होता है तो वह पक्का नहीं होता। फिर बहुधा हम अपने साथ बहुत उदारता से काम लेते हैं। इसका फल यह होता है कि हमारे प्रयोगों में कामयाबी हासिल नहीं होती और हम कोल्हू के बैल की तरह एक ही दायरे में चक्कर काटा करते हैं। इस तरह असत्य की गाड़ी चलती रहती है और अंत में हम ऐसे निर्णय पर आते हैं कि असत्य अनिवार्य है और जो अनिवार्य माना जाता है वह सहज ही जरूरी बन जाता है। यही कारण है कि सत्य के बदले असत्य की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से FM 100.7 में खसपर 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे। कुछ ही देर में 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर होगा मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम इनसे मिलिए का वक्त होगा 8:30 पर। ये कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे, 11 बजे और पुनः 12 बजे। विविध भारती कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 9:55 पर, पुनः 11:55 पर। प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:10 पर। फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का वक्त होगा 10:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 9:55 पर और पुनः 11:55 पर। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारा हाथी हमर गोट। भजन संध्या का वक्त होगा 5:10 पर। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे शाम 5:30 पर। 6 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:10 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का वक्त होगा

बजकर 20 मिनट पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए आप सुनेंगे शाम 6:20 पर और पुनः शाम 7 बजे आप सुन सकेंगे लीजिए फिर सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी वर्षा पूर्व खेती और पशुपालन के आधारभूत प्रबंध। आज की नसीहत में आप सुनेंगे मछली सह बतख पालन तकनीक। साथ ही होगा आज का टिप, कृषक पशु मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:20 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 9 से 10 बजे तक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीकंधा का वक्त होगा रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे एवं 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधी रूपरेखा। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
2: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
3: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
8: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
7: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. National Security Advisor Ajit Dobhal called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Dobhal said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
9: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
7: In a social media post, the Indian Embassy in Moscow said Mr. Dobhal participated in the first International Security Forum and the 14th meeting of High Representatives for Security Matters in Moscow. On the sidelines of the forum, Mr. Dobhal held a meeting with his Russian counterpart, Shoigu. During the meeting, the parties reviewed the current state of cooperation in the areas of defense, security, energy and trade economic ties. The BJP has appointed new party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. BJP National President Nitin Naveen appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi unit president. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP chief and Keval Singh Dhillon will be the new president of Punjab BJP. Abhishek Debroy has been appointed as Tripura BJP president. With the appointments, Mr. Naveen has begun the process of selecting a new team of office bearers in states as well as the national level. In Kerala, Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will address the Legislative Assembly today. This is the first policy address of the new UDF government in Kerala after 10 years. Following the Governor's address today, the House will adjourn and reconvene on June the 1st for discussion on the motion of thanks to the Governor's address. Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a three-day visit to Karnataka, Goa and Keralam beginning today. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he will attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Damanagere, Karnataka. In Punjab, the counting of votes for the 102 civic bodies has started. The fate of 754 candidates from 1,897 wards will be decided today. Voting was held on May the 26th. These civic polls are being seen as a litmus test for all the major political parties in the state ahead of the upcoming Punjab Assembly elections in 2027. In this multi-cornered contest, the ruling Aam Aadmi Party AAP, International Congress, Shiromani Akali Dal SAD and Bharatiya Janata Party BJP have fielded their candidates. The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate CUET-UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid al-Azha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, CUET.nta.nic.in. The CBI has arrested Giribala Singh in the Twisha Sharma death case. More in this report.
4: Giribala is a retired judge and Twisha's mother-in-law. She was arrested yesterday in Bhopal after nearly 7 hours of questioning. She will be produced before a CBI court today. A day before the arrest, the Madhya Pradesh High Court cancelled her anticipatory bail. The court said that given the seriousness of the case and the evidence, relief could not be granted to her. Twisha died under suspicious circumstances on the night of May 12 in the Katara Hills area of Bhopal. Her in-laws called it a suicide, but her family has accused her husband and in-laws of murder. Abhinav Goyal, Akashwani, Bhopal.
7: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. World Meteorological Organization, WMO, has said that global temperatures are likely to hit near record highs over the next 5 years. According to a new WMO report, annual global mean near-surface temperatures during 2026 to 2030 are predicted to range between 1.3 and 1.9 degrees Celsius above the 1850 to 1900 average. According to the report, there is an 86% chance that at least 1 year between 2026 and 2030 will surpass 2024 as the warmest year on record. There is an El Niño predicted for the end of 2026, which increases the chances of 2027 becoming the next record-breaking year. The United States, Mexico, and Canada issued a trilateral statement on public health travel measures for individuals arriving from African regions in the wake of the Ebola virus outbreak in parts of Africa. In a statement, these countries said that this coordinated approach aims to protect the citizens and the millions of visitors, fans, athletes, and tourists expected during the FIFA World Cup 2026 while maintaining travel and commerce across their borders. Meanwhile, Uganda has banned mass public gatherings in an effort to curb the spread of Ebola in the East African country. World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus has said that the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo was very complex, with conflict, insecurity, displacement, food shortages, and community mistrust complicating efforts to contain the disease. Speaking to reporters at the airport upon arriving in the DRC capital of Kinshasa, Tedros said, he had come to show affected communities that they're not alone and that the WHO was there to support the response. He said WHO teams are already working on the ground in Bunia, the capital of the eastern Ituri province, adding that he would travel there today to assess the situation. Air India has extended suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. The airlines had earlier suspended flight operations on Tel Aviv-Delhi route till June end. A senior Air India official says that flights have been further suspended, keeping in mind the geopolitical situation in the region. In the wake of the West Asia conflict, airlines have been facing multiple headwinds, including costlier fuel and airspace curbs, which pushed up their operational costs. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for thunderstorms and rainfall conditions today over parts of Delhi, Haryana and Chandigarh. According to the weather agency, Bihar, Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh are likely to experience thunder squalls today with wind speed gusting to 80 km per hour. In the US, three people were killed in an explosion that engulfed a Dallas apartment building in a massive and deadly blaze. Dallas Fire Rescue spokesperson Jason Evans announced the fatalities at a news conference. In IPL cricket, Gujarat Titans and Rajasthan Royals will meet in the all-important qualifier 2 at the Maharaja Yadavendra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh, this evening. The match will start at 7:30 p.m. The winner will take on Royal Challengers Bengaluru in the final on Sunday at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. India took a 1-0 lead after beating England comfortably by 38 runs in the first of a three-match T20 International Cricket Series at County Cricket Ground, Chelmsford. After losing the toss, India made 188 runs for 7 wickets in their stipulated 20 overs. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
10: Thank you, Sunil. The resignation of Siddaramaiah as Karnataka Chief Minister is the top news in many dailies. Siddaramaiah makes way for D.K. Shivakumar in Karnataka leadership shift, headlines Hindustan Times. Amid suspense on whether Chinese President Xi Jinping will attend the BRICS summit in India in September, the two nations held constructive talks on the LAC and border row, writes the Asian Age. To ensure foolproof conduct of the NEET UG again, the government is mulling to seek logistical support from the Indian Air Force to transport examination material, reports the Tribune. In its editorial piece titled Death Blow to Online Gaming, the Asian Age welcomes the Supreme Court's decision upholding GST on the full amount deposited by online gaming participants, seeing it as a strong step to curb betting and its damaging social consequences. The paper argues that the distinction between skill-based and chance-based betting is too blurred to be meaningful in practice and says the ruling could severely hit the industry. At the same time, it notes that retrospective taxation, though legally upheld, creates uncertainty for business. Dailies have paid tributes to poet Bashir Badr, who died yesterday. Bashir Badr, master Urdu poet of love and melancholy, passes away, headlines the Times of India. In the next 5 years, the Earth is likely to surge again and again past the international climate threshold set as safe, according to new United Nations climate projections, reports the Statesman. And finally, in a landmark development for wildlife conservation in Himachal Pradesh, forest officials in Chamba have captured the first ever video evidence of brown bear in Siabehi World Life Sanctuary, reports the Tribune. And with that, it's back to you, Sunil.
7: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah says Centre's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirements of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end. Amid continued geopolitical uncertainties in West Asia and in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
11: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
12: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। इनसे मिलिए कार्यक्रम के तहत सुनते हैं विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण संरक्षण पर प्रोफेसर तरुण ठाकुर से रमाशंकर की बातचीत।

श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारी धरती, हमारी धरा, हमारी पृथ्वी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और धरा को हम माँ के समान मानते हैं क्योंकि इस धरती से ही हमें जीने के लिए सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। श्रोताओं, जब हम अपने आसपास की बात करते हैं तो हमारा जो पर्यावरण है ये हमारे जीने के लिए हमें तत्व मुहैया कराते हैं और पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। श्रोताओं, पर्यावरण की सुरक्षा इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि इस पर्यावरण पर ही हम निर्भर हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी जीवित तत्व हैं उन्हें पर्यावरण पर ही निर्भर होना पड़ता है। और श्रोताओं, कई सालों से धरती का तापमान लगभग बढ़ता जा रहा है और इसका कारण और कोई नहीं, हमारी मानव गतिविधियां हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और श्रोताओं, इससे बच

0: के लिए कई उपाय भी किए जा रहे हैं, जागरूकताएं पैदा की जा रही हैं जिससे कि पर्यावरण का क्षरण ना हो सके। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य होता है लोगों में जागरूकता पैदा करना पर्यावरण के प्रति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझाने का भी दिवस होता है। तो श्रोताओं, पर्यावरण का संरक्षण क्यों जरूरी है, पर्यावरण कैसे प्रदूषित हो रही है और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है, इस बारे में आज जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर उपस्थित है प्रोफेसर तरुण कुमार ठाकुर जी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में प्रोफेसर हैं। तो तरुण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो तरुण जी, सबसे पहले कार्यक्रम में तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे।
1: जी, नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से आप सभी को नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रोफेसर तरुण कुमार ठाकुर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पर्यावरण विज्ञान विभाग में प्रोफेसर तथा छात्र कल्याण अधिष्ठाता के पद पर कार्यरत हूँ। मूलतः मैं मध्य प्रदेश मंडला के छोटे से गांव निवारी का रहने वाला हूं। बचपन से ही गांव की मिट्टी, जंगल और नर्मदा की धाराएं मेरे जीवन के सच्चे शिक्षक रहे हैं। शायद यही कारण है कि मैं पर्यावरण विज्ञान की ओर मेरा शोध क्षेत्र और झुकाव बना रहा है। पिछले 3 दशकों से मेरा अनुसंधान मुख्यतः 4 दिशाओं में चलता आ रहा है। पहला, रिमोट सेंसिंग एंड GIS तकनीक के माध्यम से जंगलों एवं वहां के भू उपयोग का अध्ययन करना। दूसरा, रेस्टोरेशन इकोलॉजी, पुनर्स्थापना पारिस्थितिकी पे अध्ययन करना, विशेषकर कोयला खदानों से क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्जीवन करना। तीसरा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, आजकल कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और हरित और विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस का मूल्यांकन करना और पौधों की सहायता से प्रदूषित जल और मिट्टी की शुद्धिकरण करना। ये मुख्यतः 4 बिंदु हैं जिसपे मैं और मेरी टीम इस पर अनुसंधान करती है।
0: जी जी जी जी तरुण जी, तो तरुण जी, जैसा कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो इसके बारे में बताइए, इसकी शुरुआत कब हुई और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस की पहली औपचारिकता कहना चाहिए 1973 को मिली। इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक मीटिंग थी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। उन्होंने इसको चलाने के लिए बातचीत किया, लेकिन इसकी नींव 1 साल पहले 5 से 16 जून 2072 को के बीच स्वीडन में रखी गई। उसको इन्होंने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट है, जो मानव पर्यावरण पर सम्मेलन जो हुआ, उसमें 113 लोगों के देशों में इसमें सम्मिलित हुए। यह पहला अवसर था जब विश्व के सारे देश एक स्वर में स्वीकार किया कि पर्यावरण की रक्षा कोई भौगोलिक सीमाओं में बंधा विषय नहीं है, यह संपूर्ण मानवता का सामूहिक दायित्व है। उसी सम्मेलन की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया। अब प्रश्न उठता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक तीव्र औद्योगिकीकरण, जिसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन या केमिकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, अंधाधुंध उपयोग करना, जिससे हमारे पर्यावरण या प्राकृतिक प्रणालियां जो है वो असंतुलित हो गई या असंतुलित कर दिया। जितने हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे यूरोप के देश हो चाहे US हो, इन्होंने अंधाधुंध खनन का काम किया, जिससे हमारी नदियों में रसायन का प्रदूषण का लेवल बढ़ गया, जंगल बेहताशा कटने लगे, डिफोरेस्टेशन हो गया। तो ये सारे के सारे एक कारण है जिसकी वजह से हमको ये कहना पड़ा। और एक वैज्ञानिक रहे हैं अमेरिका के, रेचल कॉर्सन, उन्होंने अपनी बुक साइलेंट स्प्रिंग में लिखा है कि इतना कीटनाशक का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं कि एक दिन आएगा जिसको हम मौन बसंत मनाएंगे, जब पक्षियों के गीत भी, उनकी आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाएगी। तो यही एक वैश्विक चेतना जागी कि विकास और विनाश के बीच की रेखा बहुत पतली है। विश्व पर्यावरण दिवस इसी आत्मंथन का एक प्रतीक है। एक दिन जब हम रुक कर सोचें कि पृथ्वी ने हमको क्या दिया और हमने उसको क्या लौटाया, यह केवल एक तारीख नहीं बल्कि वैश्विक चेतना का उत्सव है। तो यही कारण है जिसकी वजह से हमको इसकी आवश्यकता पड़ी।
0: जी तरुण जी, तो वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है?
1: देखिए, पाठ्य पुस्तक की भाषा में बात करें तो सीधा सीधा पहले कहा जाता था या सभी गांव के लोग जानते हैं कि हमारे जो जल है, वायु है, भूमि है, किसी भी अवांछित पदार्थ यदि कोई ज्यादा मात्रा में जीवों के लिए हानिकारक हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो गया। लेकिन अब की जो सदी है, 21वीं सदी है, इसमें ये परिभाषा अधूरी सी लगती है। अब तो नया आयाम ये आ गया, इसमें काले धुएं, गंदे पानी की बात नहीं कर सकते, अब तो जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म प्लास्टिक है जिसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, जो आंखों में दिखाई नहीं देती, वो देखा जाए तो हिमालय की जो बर्फ है उससे लेके समुद्र की गहराइयों तक, माँ के दूध से लेके मनुष्य के रक्त में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया जा रहा है। तो मैंने एक शोध भी किया था हमारी टीम ने, जो बड़े प्रतिष्ठित प्रकाशन भी हुई अंतर्राष्ट्रीय, उसमें ट्रेंड्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड वाटर जनरल, उसमें हमने ये दिखाया है कि सूक्ष्म प्लास्टिक है जो मृदा के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, पोषक चक्र होती है, उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक पाई जाती है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो ई वेस्ट हम बोलते हैं, जो पुराने मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पीसी है, भारी धातुओं के रूप में जितने मिट्टी को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रही है, ध्वनि प्रदूषण जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, लाइट पॉल्यूशन है जिससे आप देखेंगे पहले जुगनू रात में टमटमाते थे, रात में उल्लू चमगादड़, इनके भी जीवन चक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। और थर्मल पॉल्यूशन जो ताप का प्रदूषण है, हमारे जल स्रोतों को चुनौती दे रहा है और कहीं ना कहीं वो श्रिंक होते जा रहे हैं। इसीलिए आज इसे प्रभावित करना कि मानवीय गतिविधियों के कारण पारिस्थितिक तंत्र की उस संतुलित अवस्था में आया कोई भी ऐसा परिवर्तन जो वर्तमान या भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य, जैविक विविधता, जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करे, वही पर्यावरण प्रदूषण है। यदि हम संक्षेप में कहें तो प्रदूषण अब केवल भौतिक नहीं बल्कि रासायनिक, जैविक और यहाँ तक कि सूचनात्मक भी हो चुका है।
0: जी जी जी तरुण जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो तरुण जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले हम चाहेंगे कि एक छोटा सा विराम ले और आपकी पसंद का एक गीत हम सुने।
1: जी जी जी, अभी हम गीत की बात करें तो जो एक गीत आप सभी ने सुना होगा, पहले भी 1957 की फिल्म आई थी नया दौर, एक प्रसिद्ध गीत था साथी हाथ बढ़ाना।
0: जी जी तरुण जी, तो आइए सुनते हैं तरुण जी की पसंद का ये गीत।

0: इनसे मीडिया कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे प्रोफेसर तरुण कुमार ठाकुर जी से, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में प्रोफेसर हैं। तरुण जी, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और हम पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे थे, चूंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए अभी 2026 के दौर की हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
1: जी जी, सटीक प्रश्न आज के समय के अनुसार और 2026 के परिच्छेद में हम जिस संकट के मुहाने पर खड़े हैं, वैज्ञानिक उसे ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस अर्थात त्रिआयामी ग्रहणीय संकट कहते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। ये तीन चीजों का संगम इसमें है, परंतु यदि किसी एक चिंता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो तो वह हम जलवायु परिवर्तन, जिसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, उससे जुड़े जो संवेदनशील बिंदु है, जहां से परिस्थिति क्षति को वापस लौटाना असंभव हो जाता है। यदि हम बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, मौसम विज्ञान संगठन की, उसकी नवीन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक तापमान जो है औद्योगिक काल पूर्व स्तर से लगभग 1.5 से 1.6 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच चुका है। पेरिस एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो हमारी होती है, उसमें हमने ये कहा था पेरिस समझौते में कि 1.5 लक्ष्मण रेखा होगी, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हमारे टेम्परेचर 2030 तक नहीं जाना चाहिए, उसे हमने अभी 2025-6 में छू लिया है। तो हमारे अपने मध्य भारत में, यदि हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा की बात करें, तो पिछले कुछ वर्षों में असाधारण लू महसूस होती है, बेमौसम बरसात हो जाती है, लंबे काल तक शुष्क दिन देखने पड़ते हैं। ये सभी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है। हमने इसमें एक हमारी अपनी रिसर्च टीम ने एक अध्ययन किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है लैंड डिग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट एंड जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड इकोलॉजिकल इंडिकेटर, ऐसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में हमने प्रकाशित किया हमारे रिसर्च को। पिछले 30 वर्षों में हमने अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में और मध्यप्रदेश के कुछ पार्ट में किया है, तो उसमें ये पाया है हमने कि वर्षों से भूक्षरण और कार्बन उत्सर्जन बहुत तेजी से हुआ है और क्षेत्रीय जलवायु को सीधे प्रभावित कर रहा है। हमने अनूपपुर, शहडोल, कोरबा, बिलासपुर जैसे क्षेत्रों में सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के चित्रण, जमीनी सर्वेक्षण के माध्यम से प्रमाणित किया है कि भूक्षरण की वर्तमान दर अत्यंत चिंताजनक है, जिसमें हमारा फॉरेस्ट का एरिया भी धीरे धीरे कम हो रहा है और पॉल्यूशन का लेवल बढ़ते जा रहा है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण भी एक बड़ी चिंता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत के अनेक नगर जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 होते हैं, इसके स्तर में सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में हमारे देश के महानगर हैं। प्रतिवर्ष इससे 16 लाख लोगों की असमय मृत्यु हो रही है। यदि हम तीसरी बड़ी चिंता करें तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम पृथ्वी पर छठे महाविलोपन, जो 6 मास एक्सटेंशन के दौर से गुजर रहे हैं, जो पहली बार किसी एक प्रजाति अर्थात मनुष्य के कारण हो रहा है। इसलिए 2026 की सबसे महत्वपूर्ण चिंता एक संकट नहीं बल्कि संकटों का संगम है और इनसे निपटना अब विकल्प नहीं अनिवार्यता बन चुका है। क्योंकि आने वाला समय, अभी टेम्परेचर हम देख रहे हैं तो दिनों दिन 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर तक कुछ जगह हो जा रहा है, तो अब इससे अनिवार्य रूप से हमको मिलकर आगे बढ़ना है।
0: जी जी जी तरुण जी, तो प्रोफेसर तरुण जी, जब हम बात करते हैं आधुनिकीकरण की, डेवलपमेंट की, तो विज्ञान और तकनीकी ने आज 2026 तक जो है काफी डेवलपमेंट कर लिया है वैश्विक स्तर पर देखें, क्या हम आधुनिकीकरण की होड़ में हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं? और क्या विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके हम पर्यावरण के प्रदूषण को रोक भी सकते हैं?
1: जी जी जी, बहुत ही दार्शनिक प्रश्न है। मैं इसका उत्तर एक वाक्य से देना चाहूंगा। विज्ञान निरपेक्ष है, हमारी दृष्टि सापेक्ष है। विज्ञान और तकनीक स्वयं में ना तो दूषित है और ना ही पवित्र है। यह हम मनुष्य हैं जो अपने उद्देश्य और अपने जीवन शैली के अनुसार इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अब एक उदाहरण हम देंगे, अग्नि का आविष्कार मानव सभ्यता का आधार बना, परंतु वही अग्नि यदि जंगलों में लगा दी जाए तो पूरा फॉरेस्ट एरिया हमारा जल के राख कर देती है, पूरा विनाश कर देती है। यह सत्य है कि औद्योगिक क्रांति से लेकर आज तक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र हो हमारे, चाहे पेट्रोल डीजल वाहन हो, रासायनिक उद्योग हो, प्लास्टिक हो, इन सब ने प्रदूषण को बढ़ाया है। परंतु यह उतना भी सत्य है कि समस्याओं का समाधान भी साइंस और विज्ञान से ही निकले हैं। आज विज्ञान हमें सौर ऊर्जा प्रदान कर रही है, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी से हम अपना फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक दे रहे हैं, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस तकनीक के माध्यम से हम दूर दराज की चीजों की निगरानी, जांच पड़ताल और चीजों को अध्ययन कर रहे हैं। तो ये साइंस की ही देन है जो डेटा नीति निर्देशाओं को सही दिशा निर्देशित कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये सब हमारी कहीं ना कहीं विज्ञान की ही देन है। विज्ञान में ही हमने फाइटोरेमेडिएशन के माध्यम से शोध का कार्य किया है, जिसमें जो बच पौधे होते हैं हमारे, बच और केना, इनके माध्यम से हम जो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो घरेलू सीवर होते हैं और भारूत जो धातु उसमें प्रदूषित जल का उपचार किया जाता है, तो ये विज्ञान के माध्यम से हम इसको हाथ मिलाकर सभी समस्या का सरलता से सस्ता और टिकाऊ इसका माध्यम निकल सकता है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा हमें विज्ञान से डरना नहीं है, उसे विवेक से सही दिशा देनी है और उसका एक पॉजिटिव वे में उसका उपयोग करना है। जब विज्ञान नैतिकता और परिस्थिति की संवेदनशीलता के साथ जुड़ता है तभी सस्टेनेबल साइंस अर्थात टिकाऊ विज्ञान का जन्म होता है और यही 21वीं सदी की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
0: जी जी जी तरुण जी, तो तरुण जी जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें जंगल जो है काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो जंगल मानव अस्तित्व के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं?
1: जंगल हमारे मानव इसके लिए हम बात करें तो एक प्रकार यदि प्रकृति को हम माने कि एक हमारा जीवित शरीर है, तो जो जंगल है हमारे वन है वो इसके फेफड़े हैं। जैसे कि अमरकंटक की धरती से आपका एग्जाम्पल देना चाहूंगा, यह प्रत्यक्ष अनुभूति हम यहाँ करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक हेक्टेयर जो लैंड होती है हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, वो 6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, बदले में हमें ऑक्सीजन या प्राणवायु दे दी है, प्रदान करती है। हमने इस पे बहुत रिसर्च भी किया पिछले 3 दशकों से। यदि हम बात करें अचानक मारा अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की, तो हम ये पाते हैं कि हमारे जो सूर्य रोबस्टा जिसको साल सरई का पेड़ बोलते हैं, सरई के पेड़ में 150 से 220 मेट्रिक टन कार्बन का स्टॉक होता है एक हेक्टेयर लैंड में।

0: बात करें तो मां नर्मदा, सोन, जोहिला, अरण्य, गायत्री, सावित्री, अमरावती जैसी नदियां अमरकंटक के वनों से जन्म लेती हैं। वन मिट्टी का क्षरण रोकती हैं, भूक्षरण का पुनर्भरण करती हैं, जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसको आश्रय देती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जो आदिवासी भाई बहनों का आजीवन का साधन है, संस्कृति है, उसकी अस्मिता का आधार है। अमरकंटक के आसपास मैंने ये देखा, स्वयं का देखा हुआ है कि यहाँ के जो जनजातीय समूह है, संपूर्ण जीवन दर्शन इनका जंगलों वनों से जुड़ा हुआ है। ये पेड़ पौधे के वन के केवल लकड़ी का स्रोत नहीं मानते, अपितु वह है माता है, गुरु है, चिकित्सक है, अन्नदाता है। जैसे महुआ, चिरौंजी, तेल, तेंदू वगैरह, आंवला, हर्रा, बहेरा, यहाँ पर जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं, ये इन्हीं पे इनकी लाइवलीहुड या जीविका रहती है। हमने ये भी पाया अपने अध्ययन में कि 72 प्रकार के औषधीय पौध जो वाइल्ड लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसको हमारे जो जनजातीय समुदाय के भाई बहन हैं वो उसको भोजन के रूप में और बड़े न्यूट्रिशियस होती है ये यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो वन जो है वो सभी के लिए, मानव अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वन बचाना केवल पर्यावरण रक्षा नहीं, यह सभ्यता रक्षा है, संस्कृति की रक्षा है और अंततः हमारी स्वयं की रक्षा है।
1: जी जी जी, धरती का तापमान हर साल बढ़ता जा रहा है, तो धरती का तापमान बढ़ना भविष्य के लिए क्या चुनौतियां लाने वाला है?
0: आने वाली पीढ़ी के लिए यदि धरती का तापमान ऐसे ही बढ़तेगा, जैसे मैंने IPCC जो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है उसकी रिपोर्ट बताती है हमको 2018 के अनुसार, 22 के अनुसार कि हमारा तापमान जिस गति से चल रहा है तो वैश्विक तापमान 2.5 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। सुनने में यह छोटा अंक लगता है परंतु इसके परिणाम बड़े भयावह होंगे। आज यह प्रश्न इस पीढ़ी से नहीं, हमारे बच्चे पोते की पीढ़ी से सीधा संबंध रखता है कि धरती का तापमान भविष्य के लिए क्या चुनौतियां लेके आएगा। हम यदि 2-3 चुनौतियां आपके सामने रखूं, हिमालय के ग्लेशियर का तीव्र गति से पिघलना, ग्लेशियर हमारे मेल्ट हो रहे हैं, तीसरा ध्रुव कहा जाता है ग्लेशियर को, यह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सहित दक्षिण एशिया की लगभग सभी प्रमुख नदियों का स्रोत है। यदि ग्लेशियर तेजी से पिघले तो हमारे विनाशकारी बाढ़ आएगी और जितने भी आइलैंड छोटे छोटे हैं कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, जिससे जल संकट का गहरा प्रभाव पड़ जाएगा। दूसरी चुनौती की यदि बात करें, समुद्र स्तर में वृद्धि, जितने भी कोस्टल एरिया है और जो अर्बन सिटीज हैं, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, जैसे तटीय महानगर जैसे सुंदरबन जैसा वेटलैंड, संवेदनशील क्षेत्र, ये सब डूबने से खतरे का सामना करेंगे। यदि हम धरती का तापमान बढ़ने की तीसरी चुनौती की बात करें तो मानसून की अनिश्चितता, भारत की कृषि आज भी 50% से अधिक मानसून पर निर्भर है। हमारे शोध ने यह दर्शाया है कि मध्य भारत में मानसून के प्रतिरूप बदल रहे हैं, कहीं अल्प वर्षा तो कहीं अति वर्षा, असाधारण अतिवृष्टि, ये बेमौसम ओलावृष्टि, असाधारण सूखा, ये हमारी खाद्य सुरक्षा को कहीं ना कहीं सीधे चुनौती दे रही है। और अगली चुनौती हमारी है सार्वजनिक स्वास्थ्य की, बढ़ती गर्मी के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी एंसेफेलाइटिस जैसे रोगों का विस्तार उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां पहले नहीं देखा गया। और पांचवी चुनौती की मैं बात करूंगा, जैव विविधता की बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जो क्लाइमेट रिफ्यूजी अर्थात जलवायु शरणार्थी है, वे लोग जो जलवायु के कारण अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक विश्व में 20 करोड़ से अधिक जलवायु शरणार्थी हो सकते हैं। परंतु मैं निराशा का संदेश नहीं देना चाहता, विज्ञान कहता है यदि हम अगले 10 से 15 वर्षों में निर्णायक कदम उठा लें तो स्थिति नियंत्रित की जा सकती है।
1: जी जी जी तरुण जी, तो तरुण जी जो अभी हम देखते हैं युवा भारत की जो है एक नई तस्वीर गढ़ने को तैयार है, तो युवाओं का जो है भागीदारी पर्यावरण के संरक्षण में होना चाहिए, तो आप किस तरह देखते हैं इसको, क्योंकि युवाओं का पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में क्या भागीदारी हो सकती है?
0: एक्चुअल हमारा जो देश है भविष्य ही नहीं, इसका सशक्त वर्तमान भी युवा है। हमारे देश में 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा मिले तो भारत न केवल अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है अपितु विश्व का मार्गदर्शन भी कर सकता है। 3 दशक के अध्ययन काल में मैंने स्पष्ट पाया अपने खुद के इससे कि संवेदनशील जो विद्यार्थी पर्यावरण को पढ़ लेता है, इससे जुड़ता है, वो आजीवन उसका रक्षक बन जाता है। मैं यदि अपने पर्यावरण विज्ञान विभाग की बात करूं तो यहाँ 7 से 10 PhD बच्चों ने उपाधि

0: प्राप्त की है और वो आज देश के विभिन्न संस्थानों में पर्यावरण के दूत बनकर कार्य कर रहे हैं। और इसका यदि योगदान की बात करें तो जो हमारे युवा हैं वो पर्यावरण जागरूक और जन संवाद के लिए जो हम चेन रिएक्शन बोलते हैं, एक श्रृंखला अभिक्रिया कर सकते हैं, उस पर अपना योगदान दे सकते हैं, नवाचार और हरित उद्यमिता ला सकते हैं। जैसे माननीय जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ग्रीन स्टार्टअप, क्लीन टेक, एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हैं और वो इसमें कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, सौर समाधान, अपशिष्ट पदार्थ, जैविक उत्पाद जैसे विषयों पर ये काम कर सकते हैं। और तीसरा सिटीजन साइंस अर्थात नागरिक विज्ञान, आज मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी युवा, कोई भी यंग वायु गुणवत्ता, जैव विविधता, नदी स्वास्थ्य का डेटा एकत्र करके वैज्ञानिक अनुसंधान में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं अपने युवा साथियों से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, आपके हाथ में मात्र मोबाइल नहीं पृथ्वी का भविष्य है। आप मात्र उपभोक्ता नहीं संरक्षक हैं। आप जिस रील्स को बनाते हैं उसे प्रकृति के लिए भी बनाइए। एक पौधा लगाइए, एक नदी को गोद लीजिए, एक गांव को स्वच्छ बनाइए, फिर देखिए परिवर्तन कैसे आता है।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे प्रोफेसर तरुण कुमार ठाकुर जी से। प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में और बात कर रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो तरुण जी, कार्यक्रम में आज आपने जो जानकारी दी पर्यावरण संरक्षण के बारे में, जो बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

इनसे मिलिए कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण संरक्षण पर प्रोफेसर तरुण ठाकुर से रमाशंकर की बातचीत। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे हैं आप गाना डियर जिंदगी फिल्म से, कौसर मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

उर्दू गजल को आसान और आम बोलचाल की भाषा में लोगों तक पहुंचाने वाले मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन हो गया। उनकी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली गजलों का इस्तेमाल जुनून, मसान, जीरो और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में किया गया है। हमारी अधूरी कहानी के टाइटल ट्रैक की शुरुआत उनकी बेहद खूबसूरत गजल की पंक्तियों से शुरू होती है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे चेहरे को पड़ जाएगा।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे हमारी अधूरी कहानी फिल्म से ये गाना, रश्मि विराग के बोल, जीत गांगुली का संगीत। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार में उनकी चर्चा जिनके बुलंद आवाज और रोबदार अभिनय की दुनिया कायल है।
1: मालूम होता है बदहवासी ने तुझे अंधा कर दिया है, हमारे इंसाफ और कानून को नहीं पहचानती।
2: अपनी दी गई इस निशानी को पहचानने दिल्ली लाई, याद कीजिए आपने मुझसे वादा किया था कि अकबर से जिंदगी में एक बार जो जी चाहे मांग लेना। आज मैं आपसे अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ।
1: लो देखो
2: अनारकली।
1: देखो ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी, और ये राज कि अनारकली जिंदा है तुम्हें राज रखना होगा, ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी।
2: ऐसा ही होगा, इसे जिंदगी देकर शहीशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी।
1: अनारकली बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम हैं। एक गुलाम की बेबसी पर गौर करो कि तो शायद तुम हमें माफ कर सको।
0: जिन्होंने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को अपने उत्कृष्ट अभिनय से समृद्ध किया। रंगमंच और अभिनय के इतिहास पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, वो हैं आज के फनकार पृथ्वीराज कपूर।

राज कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिनेमा के दर्शकों पर राज किया।

0: 1960 में बनी फिल्म मुगले आजम में अकबर के किरदार को कालजयी बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर आज भी फिल्मी दीवानों के दिलों पर राज करने वाले शहंशाह हैं। रोबीले शहंशाह का मुगले आजम फिल्म का ये संवाद भला किसे नहीं याद होगा।
1: सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दें।
2: मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा।
1: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम मनार करी तुझे जीने नहीं देंगे।
2: कनीज तो कब की मर चुकी है।

पंजाब के लायलपुर में एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें रंगमंच का चस्का पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ते समय ही लग गया था। 18 बरस में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर वे पेशावर से सपनों की नगरी मुंबई आ गए और यहाँ वे इम्पीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ गए। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने सह अभिनेता का किरदार निभाया। सन 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर से जुड़ गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म राज रानी और 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने न्यू थिएटर की कई फिल्मों में अभिनय किया, मिसाल के तौर पर 1936 की फिल्म मंजिल और 1937 की फिल्म प्रेसिडेंट। सन 1937 में आई फिल्म विद्यापति, जिसमें पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। रंजीत मूवी टोन के बैनर तले निर्मित 1940 में आई फिल्म पागल में उन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई। सन 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर के बाद पृथ्वीराज कपूर अभिनय की बुलंदी पर पहुंच गए।

1968 की एसएस वासन की फिल्म तीन बहुरानियां पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की वजह से यादगार मानी जाती हैं। फिल्म तीन बहुरानियां में बच्चों के साथ डांस और मौज मस्ती करते नजर आते हैं पृथ्वीराज कपूर।

0: मुगल-ए-आज़म में इस कलाकार ने शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के किरदार को अमर कर दिया। कितनी भी बार देखी ये फिल्म, हर बार उसी तन्मयता से देखी जाती है।
1: क्या ज़लीला ही बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए?
2: ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है।
1: बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया।
2: शहंशाह रोया नहीं करते, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है।
1: और सलीम अपनी मोहब्बत से।
2: शेखू मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते।
1: इसका फैसला जंग करेगी।
2: सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी।

रंगमंच पृथ्वीराज कपूर का पहला प्यार था, इसीलिए वे 1931 में शेक्सपियर के नाटक पेश करने वाली ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी से जुड़ गए। 1944 में उन्होंने अपनी लागत से खुद की ही थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। दीवार, पठान, गदर, दहेज, पैसा उनके प्रमुख नाटक थे। उनके अभिनय को उनके परिवार ने विरासत में पाया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अभिनेता और निर्देशक राज कपूर की फिल्म आवारा में भी उन्होंने सशक्त अभिनय किया।

0: खानदान की कई पीढ़ियां एक साथ एक फिल्म में नजर आईं। फिल्म थी कल आज और कल। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर।
1: टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

0: 200 पहले पर्दे पर अभिनय के कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी
1: केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए के अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्का घर का संकल्प तेजी से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सहायता से छत्तीसगढ़ के हजारों ग्रामीण परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन के जरिए देश में अपनी नई पहचान बनाएगा। रायपुर में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, जलप्रपात, जंगल और आदिवासी संस्कृति को दुनिया के सामने लाना सरकार का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। बैठक में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की इच्छा जताई। सार्वजनिक क्षेत्र में तेल कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। कंपनियों के अनुसार मई 2026 में राज्य में पेट्रोल की खुदरा बिक्री में 8% और डीजल की बिक्री में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। डीजल की मांग बढ़ने का मुख्य कारण कृषि गतिविधियां बताई गई हैं। तेल कंपनियों ने कहा है कि राज्य भर में पर्याप्त बफर स्टॉक सुरक्षित रूप से उपलब्ध है और ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। लोगों से ये अपील की गई है कि वे घबराहट में अनावश्यक खरीदारी ना करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रमेश डेका करेंगे। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल।

उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले बीमित श्रमिकों के बच्चों के लिए मेडिकल शिक्षा में प्रवेश का सुनहरा अवसर मिला है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने देश भर के अपने 20 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए 700 सीटें आरक्षित की हैं। इन सीटों पर प्रवेश नीट यूजी परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 21 जून 2026 कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने के भी आसार है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि आज से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। सुशासन तिहार 2026 के तहत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के भंसूला में कल जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों के लिए मोहला ब्रांड का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शासन की पहली प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं तक का लाभ पहुंचाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मद सेंक्शन जारी की गई। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

रिलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं, सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी। कुछ ही देर में आप सुनेंगे 10:10 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम, पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे सुबह 11 बजे एवं पुनः 12 बजे। 11:55 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। 10:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। 10:30 पर होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:00 और 12:00 विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का समय होगा 6:10 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का वक्त होगा 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप पुनः सुन सकेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7:00। 7:20 पर होगा कार्यक्रम चौपाल, जिसमें आज की बात होगी वर्षा पूर्व खेती और पशुपालन के आधारभूत प्रबंध। आज की नसीहत में आप सुनेंगे मछली सह बतख पालन तकनीक। साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:20 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 8:30 पर। समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे रात्रि 9:00 से 10:00 तक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये समाचार आप सुन सकेंगे। विविध भारती कार्यक्रम रिले होंगे रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
6: भारती।
7: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में, जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
8: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26

20 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल,

0: ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधी जानकारी। कार्यक्रम संबंधी जानकारी में बस इतना ही। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 10:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। और पहली पेशकश में अभी आपने सुना राज बर्मन द्वारा गाया ये खूबसूरत सा नगमा। अगला गीत सुनने से पहले सुनिए ये संदेश।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
0: कार्यक्रम सुगम संगीत में अगला गीत सुनिए अपार शक्ति खुराना के स्वर में।

0: आकाशवाणी एट 90। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: संदेश से पहले आप सुन रहे थे पंकज उदास के स्वर में खूबसूरत सा नगमा, और इस नगमे के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को डिडनेश्वरी का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में ढेर सारा स्वागत है श्रोता साथियों। और हमेशा की तरह आज भी आपके खत, आपके ईमेल्स और आपके द्वारा भेजे गए आपके पसंदीदा गीत लेकर हम स्टूडियो में हाजिर हैं। श्रोता साथियों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम आपकी फरमाइश और सुनते हैं फिल्म सीमा का ये गीत जिसे गाया है मन्ना डे ने। शैलेंद्र ने इस गीत की शब्द रचना की है, शंकर जयकिशन का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं और इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला, राजेंद्र शाह, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से कारी राय, मीनाकारी पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी।

0: आकाशवाणी @90।
1: आकाशवाणी सुन रहे सभी श्रोताओं कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि बेहरा है और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। आकाशवाणी रेडियो समाचार पत्र के बाद संचार साधन का दूसरा माध्यम ही नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने का भी दूसरा माध्यम है। रेडियो ने दूर दराज गाँव को नेटवर्क से ऐसे कनेक्ट किया जैसे आज के टाइम में इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप ने। उस टाइम पे तो ये सारी चीजें नहीं होती थी लेकिन फिर भी रेडियो ने लोगों को देश दुनिया की खबरों से बहुत अच्छे से जोड़ा। सखी सहेली, आपकी फरमाइश, बहुत सारे कार्यक्रम, किसानवाड़ी पे चर्चा, मन की बात, सभी कार्यक्रमों ने लोगों को बहुत ही जल्दी एक दूसरे से जोड़ दिया और

0: रेडियो न सिर्फ न्यूज़ के लिए बल्कि बहुत सारी नई जानकारियों के लिए भी बहुत ही आवश्यक था। समय के साथ अब रेडियो का क्रेज थोड़ा कम हो गया है, बट आज भी लोगों को रेडियो सुनना शायद उतना ही आरामदायक लगता होगा जितना हमारे अभी के जनरेशन में इंस्टाग्राम में फेसबुक चलाना है। तो आप सभी को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में,

0: कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। अगला गीत सुनिए अमृत फिल्म से, जिसे गाया है मनहर और अनुराधा पौडवाल ने, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा, जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाउदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतिन भाई, मोतीम भाई मानिकपुरी, ग्राम गणेश धाम परसुली खेधा बाजार तहसील ढोंडी लोहारा बालोद से। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे अमृत फिल्म का गीत मनहर और अनुराधा पौडवाल के स्वर में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले सुनिए संदेश।
1: पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।

0: अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ, जरूर। आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ

0: बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: कार्यक्रम में श्रोता साथियों, अगला गीत सुनिए फिल्म ममता से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। इस गीत की शब्द रचना की है मजरू ने और रोशन का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रॉबर्ट सिंह, दर्रा मोड़ा से लंबोदर प्रसाद पटेल, फैलेंद्र कुमार, तेज राम, सुरेंद्र कुमार, पीयूष, हेमंत कुमार, कृष्ण राम, ख्याल तुलाराम, आर्यन, अयान, रूप बसंत, मानस, हरिशंकर और देवा पटेल।

केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़ पिन कोड जाना छे 001। श्रोता साथियों, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब इस कार्यक्रम से मुझे अलविदा कहना होगा, तो कार्यक्रम आपकी फरमाइश से अपनी रेडियो दोस्त डिडनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी केंद्र रायगढ़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: बरसात की रात, इस फिल्म से ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, रोशन का संगीत था।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से, मनाडे की आवाज में साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अलीशा की आवाज में ये गीत अलीशाज लव नोट्स एल्बम से।

अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशाज लव नोट्स एल्बम से। अलीशा और नितिन रायकवार ने इसे लिखा, संदीप चौटा का म्यूजिक।

0: अशोक खोसला की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे जब तेरे शहर से। अशोक खोसला की गजल्स की एल्बम से ये गीत अभी हमने चुनकर आपको सुनवाया।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्का घर का संकल्प तेजी से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सहायता से छत्तीसगढ़ के हजारों ग्रामीण परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की पुलिस ने आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली सूचना के आधार पर एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने गढ़चिरौली नारायणपुर सीमा के जंगलों में संचालित किए जा रहे माओवादियों के हथियार निर्माण केंद्र से हथियार, विस्फोटक और शस्त्र निर्माण सामग्री बरामद किए हैं। इस दौरान बरामद कई माओवादी सामग्रियों को घटनास्थल पर ही नष्ट भी किया गया। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रमेश डेका करेंगे। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। यह प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। छत्तीसगढ़, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, बिहार, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारईकाल, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच आज से मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने के भी आसार हैं। छिंदवाड़ा जिले के हटरी बाजार स्थित एक कपड़े और मोबाइल की दुकान में बीती रात आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम जब आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, इसी दौरान अचानक उस बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में नगर सेना का एक जवान घायल हो गया है। फोका स्थित मनसा कॉलेज में कल 30 मई से योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस शिविर में पतंजलि

योगपीठ हरिद्वार के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी रामार्थ देव शामिल होंगे। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की मदर सैंक्शन जारी की गई। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक

0: न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

फिल्म शोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा और साथियों की आवाज़ों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और आज यादों की महफिल में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित हैं और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे में लिखा है।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में जीवन के अलग अलग रंगों को, भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे दूरियां फिल्म से। जयदेव का संगीत था और सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी हूँ।

0: होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

फिल्म आंधी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस प्रोग्राम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है, उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेश और गानों की लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज इसके प्रोग्राम की और साथ ही ये भी देखते हैं कि आपके गीतों की लिस्ट कितनी मेल खाती है हमारी लिस्ट से। लेकिन जो गीत आप चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं उन शब्दों से, चाहे वो लिस्ट में शामिल हो या ना हो। हो सकता है कि मैसेजेस देखते देखते उनको भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन एक बार इबारत ज़रूर फिर से पढ़ देते हैं, है ना। हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इस इबारत को फिर से पढ़ दें और फिर शुरुआत करेंगे आज के इस प्रोग्राम की। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी जुल्फों की छाव में ये दिन क्या रात भी ठहर जाए, निगाहों का काजल मेरे दिल में उतर जाए, कजरे की महक जब हवाओं में खो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे इशारे पे हर हद से गुजर जाए, बिंदिया की चमक जैसे चांदनी का सफर, पायल की छनक लगे कोई मीठा सा असर, जब तुम्हारी निगाहें मुझे चुपके से पुकारे, दिल की हर धड़कन बस तेरा ही नाम गुनगुनाए, तुम्हारे ख्यालों का मौसम अब रुकता ही नहीं, ये दिल तुम्हारे बिना कहीं लगता नहीं, वादा किया था तुम्हारे साथ चलने का कभी, पर्वत भी झुक जाते जब होती तुम पास कभी, तुम्हारे इशारों में ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, तुम्हारे इशारों ने ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, इस प्यार ने मुझे शायर कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और उसके बाद लेते हैं आपके संदेश।

शाह भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत था। ये खूबसूरत गीत के डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ और आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपने इस गीत के सभी डिटेल्स कौन सी फिल्म से है, किसने गाया है, सब कुछ मुझे बताया है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने ये भी बताया है कि हारमोनियम का बेहतरीन इस्तेमाल प्रिलूड में मैंडोलिन के साथ इस गीत में किया गया है और साइड रिदम में खंजरी का प्रयोग भी किया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके इस तरह के मैसेजेस देख के कि आप गीतों के साथ जुड़े हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं, और संगीत अगर ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। साथ ही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेशों का। और हमारे जो साथी है फेसबुक के, वो भी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, विविध भारती के सभी कार्यक्रमों में व्यस्त रहें, यही शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब मिल बैठे हैं इस वक्त और बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये अनुभव है और बहुत ही प्यारा ये एहसास है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम में ऐसा ही होता है, सारी दुनिया हसीन नजर आने लगती है, प्रेम से गुंधे गाए कुछ शब्द अपने आप जुबान पर चढ़कर महकने लगते हैं, ये जुल्फ ये काजल कविता बनकर दिल में उतर आते हैं और गीत की शक्ल में कब ढल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज के शब्दों के आधार पर गाने चुनने का मजा ही कुछ और है। विविध भारती को सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने आंखों का काजल, पायल की खनक, उसकी बिंदिया का आकर्षण, चांदनी आदि आदि इन शब्दों को चुना है और कहा है कि मोहब्बत से पूर्ण शायराना इबारत, इबारती सफ़र का इंतज़ार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफ़र का इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम सफ़र में हैं। कभी कभी मन इतना उदास होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता और न ही संगीत से कोई खुशी मिलती है, तब दिल में उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उनके पास बैठकर रोना चाहिए, उन्हें अपनी उलझनें बतानी चाहिए। लेकिन आज जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से शुक्राने निकले, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया और फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ है या जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत संदेश है आप सभी के लिए कि क्यों ना हम उन चीज़ों का शुक्रिया करें ज़िंदगी में, हर रोज़, हर सुबह सबसे पहली चीज़। और कहते हैं ना कि जब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चीज़ों का और गिनते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, तो भगवान हमें वो ही और देता है, भर भर के देता है। हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया और खूब इबारत उकेरा है, किसी शायरा से आप कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहकर संगत का सर है, ऐसा कहूँगी मैं। और साथ ही हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो गद्यांश है, श्रृंगार रस में सरोवार है और बहुत सारी शब्द जो इनको नज़र आ रहे हैं, जुल्फ, निगाह, काजल, कजरा, महक, बिंदिया, पायल, चांदनी, वादा, इशारा, ख्याल, धड़कन, दिल, इनमें पिरोकर मोहब्बत के एहसास को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, श्रृंगार रस में आज की इबारत ज़रूर है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, कजरा मोहब्बत वाला, यहाँ पर मीना बाज़ार की बात की गई थी, है ना। मीना बाज़ार, जौहरी बाज़ार, इस तरह के बाज़ार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन सामान हम घर पे मंगवा लेते हैं, चाहे हमें एक चीज़ की ज़रूरत हो चाहे 100 चीज़ों की ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं ये बाज़ारों का जो चलन है या बाज़ारों की परंपरा कहीं खो गई है। आप मुझे लिख भेजिए ना कि आपने ऐसे कौन कौन से बाज़ार घूमे हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, कौन कौन से ऐसे बाज़ार हैं जो हम भूलते चले जा रहे हैं। मुझे आपके संदेशों का इंतज़ार है। आप मैसेजेस भेजिए तब तक ये गीत।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और जान निसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, जयदेव का संगीत था, और इस गीत के लिए बहुत से संदेश मुझ तक पहुंचे। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में ये ठंडी छाँव की तरह आया है ये गीत, है ना। मैं भी इससे इत्तफाक रखूंगी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारी एक साथी लिखती है कि ये मेरा पहला संदेश है मगर सुनती हमेशा ही हूँ, देर से आने के लिए माफ़ी चाहूँगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल देर से नहीं आए, आप इस प्रोग्राम में और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे बाज़ारों की, तो दिल्ली का लाल किला मीना बाज़ार घूमा है इन्होंने, एक साथ ही लिखते हैं, और बार बार यही नाम फिर से आ रहा है, लाल किला मीना बाज़ार, दिल्ली का पहाड़गंज पालिका बाज़ार घूमे हैं, और बड़े मॉल में भी मीना बाज़ार नाम की दुकान दिखी जाती है। बिल्कुल बाज़ारों की अगर बात की जाए तो कुछ और बाज़ारों के नाम अगर आ जाएं तो मज़ा आ जाएगा, और वहाँ पर आप क्या क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आपको यही आरामदायक लगता है कि चलो ऑनलाइन हम लोग करवा लेते हैं ऑर्डर और सामान घर पर आ जाएगा। मॉल में घूमने का मज़ा कुछ और है, और सुपरमार्केट्स में एक ही जगह से हर तरह की चीज़ें खरीदने का भी मज़ा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। साथ ही ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम पर्वत से, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये किन पर फिल्माया गया है, आप इसका जवाब भी मुझे दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ, और आपके इन दो जवाबों का इंतज़ार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है, और साथ ही साथ बाज़ारों के नाम और वहाँ पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लिख भेजिए। चलिए

आ गले लग जा, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। और बाजारों की बात हुई थी और खूब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए। जी हाँ, और यहाँ आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, LMB। जी हाँ, बिल्कुल घूमा हुआ है मैंने जौहरी बाज़ार भी। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं वहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी है जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहाँ भी मेला लगता है, बाली यात्रा कहा जाता है उसे, और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है और लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है। और बहुत सी बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है विविध भारती, और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन हैं, फेसबुक पर हमारा पोस्टकार्ड समझ लीजिए जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा, आपस में हालचाल पता कर लेते हैं। हमारे एक साथी ने मीना बाज़ार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफ़ी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफ़ी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, और ऐतिहासिक छत्ता बाज़ार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर। जी हाँ, और वहाँ पहुँचने के लिए भी कैसे पहुँचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, पूरा रास्ता समझाया कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूरत से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाज़ार है वहाँ पर, जहाँ पर ना घूमे तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफ़ी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहाँ से दुपट्टे खरीदे हैं, और वहाँ पर लकड़ी के भी काफ़ी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफ़ी पहले घूमी हूँ तो काफ़ी कुछ लिया है वहाँ से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के, और बहुत सी दूसरी चीज़ें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहाँ भी घूमा हूँ, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्चक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मज़ा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाज़ार जो कि रात भर खुला रहता है और वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकूला में भी हाट बाज़ार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए, जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुँच कर हमें ठंडक दिला रहे हैं। बिल्कुल। और बाज़ारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज़्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीज़ों को हाथों से चुनना, परखना और चीज़ों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाज़ार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाज़ार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने और ज़रूर आप पढ़ें और ज़रूर यहाँ पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाज़ार अजमेर के डिग्गी बाज़ार, नाला बाज़ार, दरगाह बाज़ार, नया बाज़ार और भिलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाज़ार है, सांगानेर बाज़ार, पवन बाज़ार, आज़ाद बाज़ार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ हूँ इससे भी क्योंकि यहाँ पर भी मैं घूमी ज़रूर हूँ। तो कितना अच्छा लगता ना, अलग अलग जगह की जानकारियाँ मिल रही हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर जिला गांव में लगते हैं, बिहार के बांका जिले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है जहां विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहां जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहां पर काफ़ी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है। जी हाँ, यहाँ पर जाकर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुँच रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और आपके मैसेजेस पर मैं आती हूँ।

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नज़दीक है जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट और ख़रीदारी का मज़ा तो बाज़ार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाज़ार लगता है जहाँ मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेंपल में, और उसके आसपास काफ़ी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर ज़िले में बड़ा बाज़ार है जहाँ हस्तशिल्प, अच्छी डिज़ाइन की मोजड़ियाँ, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क, चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं। दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहाँ से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहाँ के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाज़ार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाज़ार है, जिसे पटवा बाज़ार कहा जाता है शायद, अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूँ तो। और यहाँ पर शादी के काफ़ी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफ़ी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है जहाँ पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव जो कि पूरी ज़िले में है, वहाँ पर भी काफ़ी प्रसिद्ध रंगीन छतरियाँ, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीज़ें हैं वो मिलती है। कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाज़ारों की बात की जाए तो भिंडी बाज़ार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया हमारे श्रोता लिखे कि बहुत पहले यहाँ पर आए थे और घूमे थे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफ़ी सारे एंटीक्स यहाँ पर मिलते हैं। और काफ़ी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाज़ार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाज़ार बहुत मशहूर है, यहाँ छोटी से छोटी चीज़ यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाज़ारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कश्मीर की कली, इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, और आप सब ने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है, तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं, स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती है यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाज़ार है। और साथ ही साथ बाज़ारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाज़ार माया बाज़ार है, लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाज़ार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाज़ार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या काम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस, खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए, और अब इसी फहरिस्त में ये अगला गीत।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुँचे हैं। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: सुरीला सफर का वक्त अब खत्म होने को है, लेकिन आपके प्यारे प्यारे संदेश अब तक है मेरे पास। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज पूरे 1000 कमेंट तक पहुंचने वाले थे लेकिन थोड़े से रह गए, लेकिन किसी दिन इतने सारे कमेंट्स के साथ ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गोरखपुर में गोलघर भी है, नौका विहार भी है, भारत का सबसे लंबा स्टेशन रामगढ़ ताल भी घूमकर आए हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, SH बिहारी के लिखे बोल बहुत ही सीधे और दिल में उतरने वाले होते हैं, और ये जो गीत अभी इन्होंने सुना ये बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने प्यारे और मीठे संदेशों के लिए। और मैं अनुराधा इजाज़त चाहती हूँ आज इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है सुरीला सफ़र। आप बने रहें विविध भारती के संग।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम।

जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 30वीं कड़ी।

0: राष्ट्रीय सभा का 21वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1905 को बनारस में हुआ। नरमपंथियों के नेता, नामदार और प्रखर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ को कांग्रेस की यह राजभक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लिखते हैं,
1: राजपुत्र आए, मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया, अन्य कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया, इसलिए उन्हें शिरोपा प्राप्त हुआ। इसके बाद ढेर सारे पटाखे छूटे और राजपुत्र जहाज पर चढ़कर वापस चले गए।
2: फिर भी इस अधिवेशन से राजसत्ता के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली नेताओं की नरम भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत में ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें देश भर में पहुंच चुकी थीं। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का आह्वान ब्रिटिश राजसत्ता से किया गया।

वंदे मातरम की दृष्टि से यह अधिवेशन स्मरणीय रहा। रविंद्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सरला देवी का हाल ही में विवाह हुआ था। भगिनी निवेदिता और उनकी सहकर्मी अबला बसु भी अधिवेशन में उपस्थित थीं। अधिवेशन शुरू हुआ और दर्शकों में से आग्रह होने लगा कि सरला देवी चौधरानी वंदे मातरम गीत गाएं। सरला देवी चौधरानी एक उत्तम कवियत्री और गायिका भी थीं। श्रोताओं के इस आग्रह से अध्यक्ष नामदार गोखले चिंतित हो गए। बंग भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं के आग्रह के कारण उन्होंने सरला देवी से कहा कि वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाएं। परंतु सरला देवी ने अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम गाना शुरू किया और पूरा गाकर ही समाप्त किया।

0: वंदे मातरम की घोषणाओं से सारा अधिवेशन गूंज उठा। इसी समय सरला देवी ने ये गीत गाते हुए सप्त कोटि कंठ इन शब्दों की जगह त्रिशत कोटि कंठ शब्द बदल दिए। वंदे मातरम के शब्दों में किया गया ये पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय अपनी स्वतंत्र पहचान वाला भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ये विचार सन 1900 के बाद सामने आया। 1905 में बनारस में हुए इस कांग्रेस अधिवेशन में पास के एक अलग मंडप में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के बीचों बीच भारत का कहा जाने वाला पहला ध्वज जानबूझकर प्रदर्शित किया गया था। विशेष बात ये कि पूरी तरह भारतीय संकल्पना वाले इस ध्वज की मूल परिकल्पना जन्म से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुकी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता की थी।
1: लाल रंग के इस वर्गाकार ध्वज पर बीच में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस चिन्ह के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम, ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थी। यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी फहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को उसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। भंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का बहिष्कार, इन बातों ने और अधिक बल दिया।
0: सात अगस्त को टाउन हॉल में हुई सभा के कारण बंगाल के विभाजन का आम जनता में जो विरोध था, उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह, ये बातें पूरे देश में फैल गईं। उसमें से पहली बड़ी चिंगारी महाराष्ट्र के पुणे में गिरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में बंगाल के विभाजन पर और कर्जन पर अत्यंत कठोर शब्दों में टीका की थी। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर उस समय पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। 1 अक्टूबर को एक सभा बुलाकर युवा सावरकर ने पुणे के लोगों से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया।
1: इस सभा में समाचार पत्र काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे और न ची केड़कर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बाहर गांव से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ बड़ी गाड़ी पर लादकर वहां लाए गए विदेशी वस्त्रों की होली की गई। इस होली की आग ब्रिटिशों के लंदन स्थित राज सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, ऐसा भाषण उस समय लोकमान्य तिलक ने दिया। वंदे मातरम की घोषणाओं के बीच जलती लपटों ने पूरा वातावरण उज्जवल कर दिया। पुणे में हुई विदेशी वस्त्रों की उस विशाल होली के बाद पूरे देश भर में ऐसी होलियां जलने लगी।
0: 1905 के अंतिम 4 महीने ऐसे ही जबरदस्त हलचल के बीते। विभाजन विरोधी आंदोलन की तीव्रता बढ़ी, फिर भी नए आए लॉर्ड मिंटो ने कर्जन की ही नीति आगे चलाई। कर्जन और फुल्लर के जैसे वागबाण न छोड़ते हुए इस आंदोलन के नेताओं को कभी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर तो कभी धमकी देकर कार्रवाई का डर दिखाकर इस आंदोलन की हवा निकालने का वे प्रयास कर रहे थे। परंतु आंदोलनकारियों का निश्चय और पक्का होता गया, जिससे लॉर्ड मिंटो भी दमन की नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त, अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिसाल में हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं का अधिवेशन।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 30वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, गायिका अपर्णा केलकर, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान के सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने दो थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। जांच जारी है।

0: सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय

गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय

फिल्म चोरी चोरी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात।

0: तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवान।

फिल्म प्यासा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन का संगीत था।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते। सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी। मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक की कटिंग करते हैं फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा।
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज होनी आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाक होने ना वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपके
1: मैं मेरे
0: पसंद
1: पति का नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
1: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे हैं।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए, आप क्या
1: मुझे भी
0: करती
1: बहुत।
0: हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके
0: जी
1: बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ
0: बहुत अच्छी बात
1: और
0: है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है, चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ, बहुत सारे लोग गए, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका, बताएंगी?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ और
0: जी
1: स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही। तो मैंने
0: सिर्फ नाड़ी देखकर आप रोग
1: नाड़ी
0: का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं ना, ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में, कि जो बच्चा चल नहीं
1: हाँ,
0: सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप
1: अब
0: कोई दवाइयां देती हैं या?
1: नहीं, दवाइयां नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।

0: फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए।
1: नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती। अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की।
0: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं। आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहाँ से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही मैम।
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी,
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम, थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के अभी नाम लिए ना, ये सब वो जगह हैं मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना,
1: मसूरी, मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम और रेडियो सुनना।
0: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: शकी सहेली, हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की,
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर ही में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते हैं मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको
1: हाँ
0: सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं।
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम, सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन हैं?
1: एक बेटा, दुई बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी।
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है, इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: ओह जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं।
0: सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी, आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ।
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
0: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
1: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो उन्हें क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
0: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का, और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी, और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
0: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही
1: जी।
0: हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं।
1: जी
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ मैम।
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं। और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी दो पढ़ाई कर रहे हैं, और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं।
1: जी
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े, तो
0: जी।
1: बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक,
0: हाँ।
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ। सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है, और फिर अपने काम निपटा के 3 बजे रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका
1: जी
0: पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं, बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है, थोड़ी इधर लेट जाती हूँ बस।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहां से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है,
0: अच्छा
1: साइड में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: तो फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत ज़रूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं। और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम
1: हेलो
0: कौन सा है?
1: सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं?
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और ख़ास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ, मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी।
1: हाँ
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी,
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है,
1: जी
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप ज़रूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं फिर आप रेडियो सुनती हैं तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता, या आपको?
1: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते थे, मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना, मतलब ऐसा लगता है कि सब मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने ऐसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी, पापा मम्मी आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो, मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया, और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साईं राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने कभी किशोर कुमार का जो वहां पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी, मैं स्थान पर गई हूँ
0: जी
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ मैं जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं,
1: जी
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे, और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी
0: जी
1: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
0: जी
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है,
1: जी
0: बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
0: जी
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। वहां से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवाज दीवाना,
0: रफी साहब
1: रफी
0: का गाया
1: साहब।
0: हुआ।
1: जी।
0: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता।

प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूमाते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते। और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई, असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य यह था इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थपरता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। और धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। राम नारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी। उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

0: हुजूर आप आए कदम चूम लूं
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गाँव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 100.7 MHz पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में चरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर

0: और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, कुदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, ढोढ़ागांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बैरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूरचुंदी, बरटोली, खड़ामाचा, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 128 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार्ग के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा बिहार में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजय, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: हमार हाथी हमार गोठ आप अभी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। डीजीएफ कार्यक्रम विवरण, हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का। अब से थोड़ी देर बाद 5:10 पर आप सुनेंगे भजन संध्या का कार्यक्रम। चित्रपट संगीत सुनिएगा शाम 5:30 पर। फोन लीजिए भाग आप सुन सकेंगे शाम 6:20 पर और इस कार्यक्रम का दूसरा शाम 7 से कार्यक्रम चौपाल का। वर्षा, खेती और पशुपालन के आधारभूत प्रबंध। आज की नसीहत में आप सुनेंगे मछली सह बतख पालन तकनीक। साथ ही सुनेगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनाएंगे रात 8:20 पर। 8:30 का वक्त होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 20 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये हमारे आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का।
3: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad, यानी shrotarayagad@gmail.com।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये रायगढ़ केंद्र है। आइए अब सुने भजन संध्या। आज की कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। आज की कलाकार थी अनुराधा पौडवाल और साथी। इसके साथ ही भजन संध्या का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुने सुखविंदर सिंह की आवाज में फिल्म तेरे नाम से।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्री चरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो है, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में। इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

चित्रपट संगीत का अगला गीत आइए सुने। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत जतिन ललित का है, फिल्म का नाम चलते चलते।

फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। गीतकार थे समीर और संगीत संजीव दर्शन का था। कार्यक्रम आइए सुने फिल्म ताल से। आशा भोसले, आदित्य नारायण और ऋचा शर्मा की आवाजें हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत ए आर रहमान का है।

0: गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। छह बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्य

0: खतरनाक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में बता दें। अब से थोड़ी देर बाद 6:20 पर आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम लीजिए का पहला भाग। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुन सकेंगे शाम 7:00 बजे। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का है वर्षा पूर्व खेती और पशुपालन के आधारभूत प्रबंध। आज के नसीहत में आप सुन सकते हैं मछली सह बतख पालन तकनीक के विषय में। साथ ही सुनिएगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। सुनाएंगे रात 8:20 पर और 8:30 का वक्त होगा फिल्म संगीत का। विविध संगीत हम पेश करेंगे रात्रि 10:00 बजे और 10:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये थे हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य शेष कार्यक्रम।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।

90. हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्य ल 10,021 करोड़ रूपया ले ज्यादा के राशि स्वीकृत करेगे है। और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज ले राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाते। महोत्सव के शुभारंभ राज्यपाल रमेन डे का करें। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के आयोजन करे जाते करेगिस। सम्मेलन संबोधित करत केंद्रीय मंत्री श्री चौहान है कहन कि अबले हर राज्य ल अपन एग्री क्लाइमेटिक हालात, उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संभावना के आधार में कृषि रोड मैप तैयार करना चाहिए। केंद्र सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और मंत्रालय के पूरा टीम राज्य के संग ए दिशा में काम करे बर तैयार है। श्री चौहान है कहन है कि भारत ह खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करे है। तीसरैया अग्रिम अनुमान के अनुसार देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन करीबन 376 मिलियन टन ले ज्यादा है, जौन अब तक ले सबले ज्यादा है। उमन कहन कि चौर उत्पादन में भारत विश्व में पहली स्थान में पहुंच गिस है। सम्मेलन में प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम घलो शामिल हुई। ए मौका में कृषि मंत्री श्री नेताम कहन कि छत्तीसगढ़ अब परंपरागत धान के खेती के संग्रह फसल विविधीकरण, डिजिटल तकनीक और पर्यावरण अनुकूल स्थायी कृषि के एक नवा युग में आगे बढ़त है। राज्य सरकार नवा अंजोर विजन 2047 के जरिया राज्य के लगभग 40 लाख किसान परिवार मन के आर्थिक उत्थान पर काम करत है। इमा 82% लघु और सीमांत किसान और 31% अनुसूचित जनजाति के किसान शामिल है। कृषि मंत्री है बताएं कि सरकार के लक्ष्य किसान ला गुणवत्तायुक्त बीज, संतुलित खातु उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्य ला 10,021 करोड़ रूपया ले ज्यादा की राशि स्वीकृत करेगे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ए फैसला के स्वागत करत कहन कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अगुवाई में हर गरीब ला पक्का घर के संकल्प तेजी ले पूरा हुआ थे। उमन कहन कि इस सहायता ले छत्तीसगढ़ के हजारों ग्रामीण परिवार मन के पक्का घर के सपना साकार हुई। मुख्यमंत्री है कहन कि राज्य सरकार जम्मू पात्र परिवार तक योजना के फायदा समयबद्ध और पारदर्शी तरीका ले पहुंचाए बर प्रतिबद्ध है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज ले राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाते। 3 के महोत्सव के शुभारंभ राज्यपाल रमेन डे कहा करें। उन्हें समारोह के अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करें। ए मौका में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहें। ए महोत्सव में छत्तीसगढ़ समेत आने आने राज्य के आम उत्पादक शामिल हुए थे। समारोह ला संबोधित करत राज्यपाल है कहन कि ए महोत्सव हमार किसी परंपरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उद्यानिकी नवाचार और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के उत्सव है। उन्हें मुख्यमंत्री है राष्ट्रीय आम महोत्सव ला प्रदेश के किसान मन ला फायदेमंद बताई है। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डहाले रखे गए ए महोत्सव में आम के आने आने किस्म के प्रदर्शनी लगाए गए है। ये प्रदर्शनी हर एक दिन मझनिया 12 ले रतिहा 9 तक आम लोगन मन पर खुला रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है नीट पेपर लीक के घटना ला दुर्भाग्यपूर्ण बताए है। श्री प्रधान है आश्वासन दिन है कि नीट के पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीका ले बिना कोनो गलती के संपन्न करे जाही। छात्र मल्ला संबोधित करत श्री प्रधान है ओमन ला आश्वासन दिन कि सरकार ओमन के चिंता ला समझते। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान है कहन कि सरकार ये सुनिश्चित करत है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ये मामला के पूरा जांच करे और दोषी मल्ला कड़ा सजा दे जाए। राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI के खाली सीट मनु पर प्रवेश पर आज ले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट में आवेदन कर सकते। संचालनालय डहाले जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की प्रक्रिया 3 में होगी। पहली चरण के चयन सूची 16-22 जून तक जारी करे जाही। उन्हें दूसरिया चरण के चयन सूची 26 जून ले 3 जुलाई तक और तीसरिया चरण के चयन सूची 8 ले 12 जुलाई तक जारी करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़वो पांचे समाचार कोती। पद्मश्री सम्मान ले अलंकृत डॉक्टर सुनीता गोडबोले और डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले हा आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले सौजन्य भेंट करीन। मुख्यमंत्री हा उमन के उपलब्धि में बधाई और शुभकामना दीन। संग्रह मुख्यमंत्री हा बस्तर के दूरदराज के जनजाति अंचल में दशक भर ले निस्वार्थ चिकित्सा प्रदान करे के उखर योगदान के सराहना करीन। उन्हें गोडबोले दंपत्ति हा आज वित्त मंत्री OP चौधरी ले घलो भेंट करीन। ए दौरान श्री चौधरी हा उमल्ला ए राष्ट्रीय उपलब्धि पर बधाई और शुभकामना दीन। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला के पुलिस आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी मल्ले मिले सूचना के आधार में एक ठिन संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान चलाईस। ए दौरान सुरक्षा बल मन गढ़चिरौली नारायणपुर सीमा के जंगल में संचालित करे जात माओवादी मन के हथियार निर्माण केंद्र ले हथियार विस्फोटक और शस्त्र बनाए के जिनीस जब्ती करीस। जब्ती करेगे कई ठिन माओवादी जिनीस ला घटनास्थल में ही नष्ट घलो करेगी। सुनैया मल्ला बता दें कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में मैं ए बखत ग्रीष्म लहर और मानसून ऊपर रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी ले गए विशेष भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 30 मई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले FM और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। अब पे से मौसम के हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक ठिन द्रोणिका मध्य पाकिस्तान ले अंदरूनी ओडिशा राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर छत्तीसगढ़ तक फैले हैं। उन्हें ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्व मध्य बंगाल के खाड़ी में बने हुए है। एकर अलावा बंगाल के खाड़ी ले नमी के आगमन सरलक हुआ थे। एक स्थिति प्रदेश के मौसम में बदलाव हो के संभावना है। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के

0: लखनऊ संभाग के एक दो जगह में गरज चमक के संग अंधर चले और गाज गिरे के चेतावनी दे हैं। उन्हें कुछ एक जगह में हल्का वर्षा हुए या गरज चमक के संग छीटा पड़े के आसार है। छत्तीसगढ़ सरकार नियत निलारार योजना 2.0 के तहत वामपंथ उग्रवाद ले मुक्त क्षेत्र और वनांचल के जम्मू ग्रामीण मनला जन कल्याणकारी योजना ने जोड़ के 100% फायदा पहुंचाई। मुख्य सचिव विकास सील के अध्यक्षता में मंत्रालय में रखे गए उच्च स्तरीय बैठक में ये योजना के रूपरेखा में आज चर्चा करेगी। योजना के तहत दूसरे चरण में 31 ठीन व्यक्तिगत हितग्राही योजना, 14 सामुदायिक सुविधा और 10 ठीन जरूरी सेवा गांव गांव तक पहुंचाई जाएगी। अब थोरकुन समाचार सारमा। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के टीम है कोरबा जिला के पोड़ी उपरोड़ा विकास खंड के तुमान में चलत सुशासन तिहार समाधान शिविर में एक झीन लिपिक प्रदीप मिश्राला 40,000 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। बालोद जिला के पुरूर थाना पुलिस है स्कूटी ले गांजा तस्करी करत एक झन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। एकर कराले 12 किलो ले ज्यादा गांजा बरामद करे गए है जेखर कीमत 6 लाख रुपया ले ज्यादा बताए गए है। और रोजगार कार्यालय रायपुर कोतिले अस्थिबाधित दिव्यांग जन मन बर 5 जून के शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैनन बाजार में विशेष रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। केंद्रीय कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ समेत 12 ठीन राज्य ल 10,021 करोड़ रुपया ले ज्यादा के राशि स्वीकृत करेगे है। और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज ले राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाते। महोत्सव के शुभारंभ राज्यपाल रमेन डे का करें। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम। लीजिए फिर सुनिए।
2: सूरज की किरणों से है ये जहां रोशन, तो वहीं ढलती शाम की खूबसूरती हमारी आंखों को हमारे मन को सुकून दे जाती है और दिन भर की थकान मिटाती है हर शाम। और ये लम्हा और भी बेहतरीन बन जाता है जब रेडियो पर सुनते हैं आप अपने पसंदीदा गीत। नमस्कार साथियों, मैं रजनी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में। तो चलिए साथियों, एक एक करके हमारे दोस्तों के फोन कॉल्स ले लेते हैं और सुनते हैं उनके फरमाइशी गीत। हेलो, प्रोग्राम है लीजिए फिर सुनिए। बहुत बहुत स्वागत है इंद्रभान सिंह जी आपका फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में। बताइए कैसे हैं आप? बिल्कुल हाँ, सही पहचान रहे हैं आप।
3: जी मैडम, आवाज ऐसा हो जाता है कि मेरा आवाज आप पहचान जाते हैं, आपका आवाज मैं पहचान जाते हैं, पहचान जाते।
2: जी हाँ,
3: बहुत अच्छा आवाज मैडम आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे इसके लिए। बताइएगा अपनी फरमाइश, कौन सा गीत सुनिएगा आज?
3: आज मैं सुनूंगा मैडम फिल्म का नाम है क्या बोलते हैं, भाग मिल्खा भाग।
2: भाग मिल्खा भाग
3: जी, मस्तों का दिन हवन करेंगे, हवन करेंगे गायक दिव्या कुमार।
2: और गर्मी से निजात पाने के लिए कौन कौन से उपाय कर रहे हैं आप?
3: गर्मी से मैडम मैं ड्यूटी जाता हूँ तो छाता को उपयोग करता हूँ, पानी का बोतल भी जाता हूँ, पानी को पीता हूँ। और इसके अलावा खीरा ककड़ी करिंदर ये सब भी रखता हूँ, प्याज भी रखता हूँ। और लोगों से आग्रह करूंगा कि गर्मी के मौसम में जानवरों को धूप में ना बांधे, उनको नहला के छाए में बांधे और चिड़ियों को और जानवरों को दाना पानी दे, क्योंकि चिड़िया उनके आते मेरा पानी नहीं मिलता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है गर्मी। मैं कोशिश करूंगा कि सभी लोगों से कि वो लोग भी अपने छत ऊपर आंगन पर छाए जगह में उनको करते अपनी कटोरी में पानी दे, नाक में पानी दे दें जानवरों को, तो अपने खाना पानी खा के चिड़िया लोग दाना खा के वहां से मिल जाते हैं तो उनको बड़ा संतुष्टि मिलता है, उनको पूर्ण का काम।
2: धूप से बचें और गर्मी में रखें अपनी सेहत का ख्याल, स्वस्थ रहें। इसी के साथ लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। फोन इन में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: धन्यवाद जी।

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार
1: मैं भाग सिंह राजपूत बोल रहा हूँ मैडम, नानघाट कातलगोड़ से।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाग सिंह राजपूत जी। फोन इन प्रोग्राम लीजिए फिर सुनिए। मैं बताइएगा अपनी फरमाइश, कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: शेर न कोई मिल गया का सुना दीजिएगा।
0: कौन सी फिल्म का गाना?
1: कोई मिल गया वाले गीत है ना,
0: कोई मिल गया फिल्म से कौन सा गीत सुनवा दें?
1: टाइटल टाइटल गीत सुनवा दीजिएगा।
0: अच्छा, लीजिए फिर पूरी कर रहे हैं आपकी ये खूबसूरत सी फरमाइश। फोन इन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: जी।

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: नमस्कार मैडम जी, देवराम
0: जी नमस्कार, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बोल रहा हूँ, सालना भारत से।
0: बहुत बहुत स्वागत है देवराम जी आपका फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में। बताइएगा अपनी फरमाइश, कौन सा गाना सुनवा दें हम आज?
1: नाच मेरे बुलबुल रोटी फिल्म का है।
0: रोटी फिल्म का ये गीत आपने पसंद किया है, लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश। फोन इन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद
1: नाम लेना चाहता हूँ अपने भाइयों का।
0: जी। मैं रजनी बोल रही हूँ, आपकी दोस्त और होस्ट।
1: जी,
0: जी
1: अपने भाई का नाम लेना चाहता हूँ। तो
0: जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: वो बोलते हैं प्यार से हम लोग उसको, और मेरा एक दोस्त है जी, गुलाब राम पटेल है,
0: जी
1: और मास्टर का टेलर मास्टर
0: हाँ,
1: भरत लाल यादव।
0: अच्छा लीजिए फिर पूरी कर रहे हैं आपकी ये फरमाइश। फोन इन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: रजनी मैडम बोल रही है ना?
0: जी बिल्कुल,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, गंदे पंडरिया से।
0: बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आपका पवन जी। फोन इन
1: धन्यवाद,
0: कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में।
1: बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है मैडम जी।
0: जी हाँ, बातचीत करके आपसे काफी अच्छा लग रहा है। और कौन सा गाना सुनवा दें हम आज?
1: गाना आज एक दूसरी फिल्म का गीत सुनवा दीजिए, बाली उम्र को 18 बरस की सलाम, ऐसा कुछ गीत है, उस गीत को सुनवा दीजिए
0: अच्छा,
1: आज।
0: हम पूरी कर रहे हैं आपकी ये फरमाइश। फोन इन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ मैडम जी, धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे लीजिए फिर सुनिए। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे से। FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: रायपुर और सरायपाली केंद्र है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: पर मैंने ने कहा,
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अकलमंदी की बात की है।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
12: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
12: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
8: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब हर राज्य को अपने एग्री क्लाइमेटिक हालात, उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय संभावनाओं के आधार पर कृषि रोडमैप तैयार करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रूपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आम महोत्सव का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने, अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब हर राज्य को अपने एग्री क्लाइमेटिक हालात, उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय संभावनाओं के आधार पर कृषि रोडमैप तैयार करना चाहिए। केंद्र सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और मंत्रालय की पूरी टीम राज्यों के साथ इस दिशा में काम करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि चावल उत्पादन में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है।
13: आपको बताया कुछ राज्यों का बनाया जा सकता है, मैं जी जान से आपके साथ लगूंगा, केंद्र की पूरी टीम आपके साथ लगेगी। किसी भी दिशा में खेती को मत जाने दीजिए, राज्य के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को देख के कौन सी फसल सुंदर थी, कौन सी वेराइटी, हम कैसे है, हम साथ आपके खड़े हैं। हर अपील करूंगा आप अपने कृषि का रोड मैप, हमारे साइंटिस्ट तैयार है, हमारे अधिकारी तैयार है, हमारी योजनाएं आपके लिए हाजिर है और मैं भी हाजिर हूँ।
1: सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा कि वे किसानों की जरूरत के अनुसार तेज व्यावहारिक और मांग आधारित शोध करें। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे खेत बचाओ अभियान के माध्यम से किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि 1 से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में जनप्रतिनिधि, वैज्ञानिक अधिकारी और किसान मिलकर खेत स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं। सम्मेलन में राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी शामिल हुए। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार नवा अंजोर विजन 2047 के जरिए राज्य के लगभग 40 लाख किसान परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्के घर का संकल्प तेजी से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सहायता से छत्तीसगढ़ के हजारों ग्रामीण परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र परिवारों तक योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देशभर के स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू मुक्त बनाना है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका ने किया। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल हो रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस महोत्सव हमारी कृषि परंपरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उद्यानिकी नवाचार और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। वहीं मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आम महोत्सव को प्रदेश के किसानों के लिए लाभदायक बताया है।
14: और भी किसान यहाँ पर आए हैं, उनको भी एक जानने का अवसर मिलेगा कि आम की खेती कैसे की जाती है। और आज जहाँ हम लोग अपने देश के किसानों की आय दोगुना करने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो उसमें उद्यानिकी विभाग और आम की खेती ये भी एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होने वाला है।
1: उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आम की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की पुलिस ने आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली सूचना के आधार पर एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने गढ़चिरौली नारायणपुर सीमा के जंगलों में संचालित किए जा रहे माओवादियों के हथियार निर्माण केंद्र से हथियार, विस्फोटक और शस्त्र निर्माण सामग्री बरामद की। बरामद कई माओवादी सामग्रियों को घटनास्थल पर ही नष्ट भी किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पद्मश्री सम्मान से अलंकृत डॉक्टर सुनीता गोडबोले और डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले ने आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने उनकी इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बस्तर के सुदूर जनजातीय अंचलों में दशकों से निस्वार्थ चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उनके योगदान की सराहना की। वहीं गोडबोले दंपत्ति ने आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी से भी मुलाकात की। इस दौरान श्री चौधरी ने उन्हें इस राष्ट्रीय उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी, वहीं दूसरे चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका मध्य पाकिस्तान से अंदरूनी ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से नमी का आगमन लगातार हो रहा है। इसके असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं कुछ स्थानों में हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार ग्रीष्म लहर और मॉनसून पर रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 30 मई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा एफएम और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के पानाबरस में आदिम आस्था स्थलों के संरक्षण संवर्धन और जनजातीय संस्कृति सुरक्षा अभियान के तहत महासभा का आयोजन किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत 27 से 30 मई तक मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर व्यापक जन जागरूकता और निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड के तुमान में चल रहे सुशासन तिहार समाधान शिविर में एक लिपिक प्रदीप मिश्रा को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले के पसान तहसील के पटवारी को एक किसान से 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। बालोद जिले की पुरूर थाना पुलिस ने स्कूटी से गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 12 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। और रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा अस्थि बाधित दिव्यांगजनों के लिए 5 जून को शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार में विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार नियर नीलानार योजना 2.0 के तहत वामपंथ उग्रवाद से मुक्त क्षेत्रों और वनांचलों के सभी ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर शत प्रतिशत लाभ पहुंचाएगी। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना की रूपरेखा पर आज चर्चा की गई। योजना के तहत दूसरे चरण में 31 व्यक्तिगत हितग्राही योजनाएं, 14 सामुदायिक सुविधाएं और 10 आवश्यक सेवाएं गांव-गांव

0: रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आम महोत्सव का राज्यपाल ने किया शुभारंभ और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने, अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिन्दी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी केंद्र है। आइए अब सुने फोन इन कार्यक्रम लीजिए सुनिए का शेष भाग।
2: हेलो, कार्यक्रम है लीजिए फिर सुनिए।
3: हेलो
2: जी।
3: हाँ नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: वंदे मातरम रजनी जी को हमारा वंदे मातरम।
2: जी रामचंद्र माखीजा से।
3: जी पहचान गए पटेल मैडम।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है माखीजा जी आपका फोन इन प्रोग्राम लीजिए फिर सुनिए में।
3: जी धन्यवाद।
2: जी बताइएगा अपनी फरमाइश।
3: आज सुनाएगा रूप बदल रही हर पल जिंदगी कल हो ना होकर गीत सुनाएंगे।
2: जी
3: और गर्मी कैसा है धूप उधर?
2: जी गर्मी तो प्रचंड रूप से यहाँ पड़ रही है, सूरज की तपिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और यही हम श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि गर्मी में अपनी सेहत का खास ध्यान रखें।
3: जी जी
2: जी।
3: शरबत पानी पिए, नींबू पानी पिए और गमछा वगैरह चश्मा वगैरह लगा के चले।
2: जी जितने भी उपाय है वो जरूर करने ही करने चाहिए।
3: और पक्षियों के लिए जल वगैरह रखे ऊपर में या कोई स्थान हो पक्षियों के लिए बाहर में।
2: जी और भी बहुत सी बातें हैं, अपने हिसाब से अपने तरीके से हम गर्मी से राहत पाने के लिए उपाय कर सकते हैं।
3: जी जी
2: जी, जी। लीजिए फिर पूरी हो रही है आपकी ये फरमाइश, फोन इन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे।
3: ओके वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम। जी जी।

0: आकाशवाणी F90
1: एक उपलक्ष्य ही पूरा आकाशवाणी परिवार ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देत हूँ। आकाशवाणी सुनत मला कई दशक बीत गए संगीत देशभक्ति गीत और देश विदेश समाचार संग अपन स्थानीय खबर मन घर आकाशवाणी रायगढ़ ले प्रसारित हो अनिता विहार घर द्वार और सखी सहेली कार्यक्रम मला बहुत पसंद है। मला अलग अलग तरह के खाना बनाना बहुत पसंद है और महिला मन के कार्यक्रम अनिता विहार घर द्वार और सखी सहेली में तो कई तरह के रेसिपी ही बताते नया नया जो सुन के मैं बनाथों और घर के मन बड़ पसंद करते। जब घर के सब अपन काम बुता में निकल जाते तेकर पाछू मैं रेडियो सुनत अपन बुता काम ला करथो। एकर से मोर काम भी हो जाते और मनोरंजन भी। आकाशवाणी में हमारा प्रशिक्षित करता मन और बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम के आए एक एकर से कामना किसन एक घाव और शुभकामना देत हूँ।
2: हेलो कार्यक्रम है लीजिए फिर सुनिए।
3: कार्यक्रम है लीजिए फिर सुनिए आकाशवाणी रायगढ़।
2: जी बिल्कुल आकाशवाणी रायगढ़ है ये आप सुन रहे हैं और फोन इन में शामिल हो गए हैं आपका फोन कॉल।
3: जी धन्यवाद रहेंगे। मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपका नियमित श्रोता श्री प्रमेश साहू बोल रहे हैं।
2: जी आपके ईमेल हमारे तक पहुंचते रहते हैं सुरीत जी।
3: जी बहन जी सब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी जो हम जैसे श्रोताओं का आप अधिक से अधिक ईमेल और पत्र शामिल करते हैं सब श्रोताओं का बहन जी।
2: जी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप समय दे रहे हैं रेडियो को और हम जानना चाहेंगे आप कितने सालों से रायगढ़ एफएम सुन रहे हैं और कौन सा पसंदीदा प्रोग्राम होता है आपका।
3: रायगढ़ एफएम तो हिंदी में करीब 20-25 वर्ष से सुन रहा हूँ। जैसे आपके रायगढ़ केंद्र शुरुआत हुआ है ना तब
2: जी जी
3: और उस समय वहाँ पे हमारे अधिशासी जी जो थे ना उनसे भी मुलाकात करने में गया था वहाँ आकाशवाणी रायगढ़ में
2: जी।
3: उनसे मेरी मुलाकात हुई और कार्यक्रम आपके यहाँ का मैं हमर लोक गीत हमर लोक रंजनी माटी के गीत और सखियों की पसंद और सखियों की पसंद के साथ साथ अपना चिट्ठी मिली वगैरह जो कार्यक्रम होता है चौपाल वगैरह
2: जी
3: वो सारे का सारे कार्यक्रम सुनता हूँ आपके लीजिए फिर सुनिए हो गई हेलो संगी हेलो संगवारी ये सब कार्यक्रम सुनता हूँ और बहनों के पसंद के साथ साथ आपके पत्र आपके गीत जो होता है सखियों की पसंद ये सब कार्यक्रम भी सुनता हूँ बहन
2: जी। हम तहे दिल से आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका शुक्रिया अदा कहना चाहेंगे। कौन सा गाना सुनेंगे आज।
3: जी धन्यवाद बहन जी और गाना सुनने से पहले आपको बहुत चुनिंदा और खास खास जो प्रशंसक सुनता साथी है बहन जी उनका भी दो चार लोगों का नाम ले लूं बहन जी जो खास आपके कार्यक्रम को बहुत पसंद करते हैं बहन
2: जी। बहुत बहुत स्वागत है उनका भी।
3: जी जी जी तो बहन जी हमारे गणेश धाम पर सुनी से जितेंद्र दास मणिपुरी शंकर सोनी से नारायण लाल साहू जी है करीम बदर से पुरुषोत्तम निर्मल कर जी है रुआ माधा संतरी बाजार भिलाई से सुशील जैन साहब जी है हमारे भिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन जी है बहन जी और हमारे योगेश सारवा जी अशोक कुमार साहू जी है कर्मा चौक लोहारी जी से बहन जी और हमारे कन्या दमो बालाघाट से मुन्ना लाल पटले जी है बहन जी डोंगरिया मलाज से हमारे मुन्ना लाल पटले डोंगरिया मलाज खान से और कन्या दमो बालाघाट से हमारे देवा राम साहू गुरु जी है बहन जी और आर्यनगर को होकर भिलाई उत्तम सिंह जंगेल और डंडी लोहारा बालो से देव शंकर पांडिया जी
2: उन सभी सुनने वालों का हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और अब फाइनली आप अपनी फरमाइश बताइए।
3: तो मेरी फरमाइश यही है कि धरती मेरी माता पिता आसमान मुझको तो अपना अच्छा लगे सारा जहाँ तक एक गाना है बहन जी गीत गाता चल
2: पुराने गाने सुनते हैं आप।
3: जी जी जी जी भाई, बहन जी मैं तो क्या उम्र दराज वाला आदमी हूँ बहन जी, और मेरी उम्र करीब 65 साल की हो गई है बहन
2: जी। जी आप स्वस्थ रहे, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। लीजिए फिर पूरी हो रही है आपकी ये फरमाइश, फोन इन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद बहन जी आपको और हमारे समस्त रायगढ़ केंद्र को भी बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी।

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: जी नमस्कार,
0: जी नमस्कार।
1: मैं दशरथ सेन बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के। जी
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका दशरथ जी, फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में।
1: आज शायद ऐसा लग रहा है कि इस आकाशवाणी पर पहली बार फोन है हमारा।
0: बहुत बहुत पुनः आपका वेलकम कर रहे हैं हम, कैसा लग रहा है आपको?
1: बढ़िया लग रहा है, किसी जगह अगर पहली बार जाए तो वहाँ तो अच्छा ही लगता

0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और मैं बताना चाहूंगा मैम, मैं हेयर कट का काम करता हूँ और आकाशवाणी का प्रसारण भी साथ में चलता है
0: जी।
1: मोबाइल ऐप के जरिए सभी का हम भरपूर मनोरंजन करते हैं, सूचनाओं और ज्ञान सभी की बातें हमें घर बैठे मिलती है आकाशवाणी रेडियो के जरिए
0: जी। जानकर अच्छा लगा कि आप ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रायगढ़ पर, बहुत खुशी हुई ये जानकारी हमें
1: जी। हमें भी बहुत खुशी हो रही है आज आकाशवाणी रायगढ़ इससे जुड़े, बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, कौन सा गाना सुनिएगा आज?
1: मुकद्दर का सिकंदर।
0: मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म से कौन सा गाना?
1: रोते हुए आते हैं सब, अच्छा हुआ जो जाएगा
0: जी,
1: क्योंकि एक आकाशवाणी सुकून देते हैं ना, तो जो बीमार आदमी है वो भी खुश हो जाता है।
0: टाइटल सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं आप
1: जी?
0: लीजिए, फिर पूरी हो रही है आपकी ये फरमाइश। फोन इन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपके लिए पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: और एक संदेश है कि गर्मी का मौसम चल रहा है
0: जी, हाँ,
1: ठंडा पानी पिए वो भी मटके का, और आकाशवाणी को सुने
0: जी।
1: ये बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: तो साथियों, ये तो रहा हमारा आज का शानदार फोन इन कार्यक्रम। लीजिए फिर सुनिए, इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं बस एक फोन कॉल के माध्यम से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर बुधवार शाम 4 बजे से, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नोट कीजिएगा हमारा फोन नंबर। फोन नंबर है 22 32 33 और रायगढ़ का STD कोड है 07762। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा भूपत सिंह धुर्वे का, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल का, कार्यक्रम का संचालन किया मैंने यानी आपकी दोस्त एंड होस्ट रजनी ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रवि आनंद। और अब इस प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिएगा आकाशवाणी रायगढ़।
1: अभी थे फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए FM बैंड पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है।

0: चौपाल कार्यक्रम में चौपाल सुनिया जम्मो संगी जहुरिया मल्ला आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के राम राम जय जुहार। संगवारी और चौपाल के बैठकी में जैसे बातचीत चलते हमेशा की तरह हमन चर्चा करथन खेती किसानी पशुपालन उद्यानिकी नाना प्रकार के विषय ला लेके आथन। तो संगी हुआ ऐसने में आज के बाद के विषय हावे कि वर्षा पूर्वक खेती और पशुपालन के आधारभूत प्रबंधन हमन तैयारी कैसे करबो। देखा संगियों कई जगह आंधी तूफान चलत है, कई जगह वर्षा हुआ थे, कई जगह किसान भाई मन फसल के भंडारण करत हैं, कई जगह किसान मन अवैया खरीफ फसल के तैयारी पर प्रबंधन करत हैं, बीजा भाथा के खातू के प्रबंधन करत हैं। तो ऐसने में आप मतलब का तैयारी करना है खेती किसानी के तेखर बारे में जानबो। तो सबले पहली तो अगर आंधी तूफान कर से पानी वर्षा हुई से तो आप मन के खेत में अगर नमी हावे नांगर गढ़ सकत है तो खेत की गहरी जुताई जरूर करो। अगर माटी जांच के सुविधा हावे जल्दी उपलब्ध हो जाते, कीट भी आते आजकल एकदम साले ओकर प्रतिक्रिया यानी कहना चाहिए ओकर परिणाम आ जाते तो वो चीज़ ला भी आप मन करा सका था। खेत डोली पार के जो मेड़ होते संगवारी हो वो मेड़ में आप मन का है ओला मरम्मत कर सका था, बढ़िया से दुरुस्त कर सका था। का होते संगवारी हो अगर मेड़ ठिन्ना नहीं रहे वर्षा के पानी भाग जाते एकर से हमार फसल हर का कहबो संगवारी हो अच्छा से नहीं हो पाए। तो खेत के मेड़बंदी ला बढ़िया मजबूत कर, उन्नत खाद बीज के खरीदारी करो और जल निकासी की व्यवस्था अगर हम पार में लही अगर ठिन्ना राखबो तो ओकर से नहीं हो, ओकर से अलावा हमर पार मेड़ में कहाँ उछलाहा पानी हर जाही कहाँ गजराहा पानी हर जाही ये सब ला देखना पड़ते। का धान बुआई करथन तो हमला गजर से जोन पानी निसरते तेला हमला ध्यान रखना पड़ते, काबर की हमन खुर्रा बोनी करथन या लेही पद्धति से चीखला मता के करथन तो ऐसने में पानी ला शुरुआत निकासी की व्यवस्था करथन तो वो स्थिति में कहाँ से निकासी के करबो। और जब खेत हर बढ़िया फसल से बढ़िया हो जाए यानी 8 अंगूर 10 अंगूर 15 अंगूर के हो जाए तो कैसे होकर पानी की निकासी व्यवस्था कौन ठाउर ले करबो कौन ठान ले करबो इला आपन देख के बढ़िया प्रबंधन करा। संग में पशुपालन में आपन के जो सेड हावे पशु के कोठा आवे तेला ध्यान रखा और टीकाकरण जरूर कराव ताकि संगवारी हो जो नाना प्रकार के रोग बीमारी आते उकर से बचाव हो सके। ये तो रिसे आप मन पर के विषय। अब चला संगवारी हो हमर किसान के भेंटवार्ता के क्रम में जानबो। लक्ष्मण पटेल हमें ग्राम कंचनपुर विकास खंड बरम किला के प्रगतिशील कृषक हमें। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न सम्मान ले सम्मानित कृषक हमें। कैसे गन्ना की व्यवसायिक स्तर पर ओमन खेती करके लाभ कमाते हैं आवा सुनी ओमन की कहानी ओमन की जुबानी। संगवारी हो राम राम जय जुहार। भेंटवार्ता के विशेष अंश मा हमर बीच मा ऐसे प्रगतिशील किसान उपस्थित हैं जोन मन ला राज्य स्तरीय सम्मान मिल चुके हैं। सम्मान के नाम हावे डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न सम्मान। ऐसे किसान लक्ष्मण कुमार पटेल जी हमर बीच मा उपस्थित हैं। सबले पहली लक्ष्मण कुमार पटेल जी हमर डहले आप मन ला राम राम जय जोहार।
1: राम राम जय जोहार।
0: पटेल जी बतैया आप मन के परिचय आप मन के जुबानी।
1: मोर नाम लक्ष्मण कुमार पटेल सरिया कंचनपुर विकास खंड बरम कला के निवासी हूं
0: जी।
1: और अभी इस साल में थोड़े हट के खेती करे हूँ, गन्ना के खेती फिर शुरू करे हूँ।
0: अच्छा गन्ना, गन्ना यानी कुसियार की खेती।
1: हाँ
0: है ना कुसियार। हाँ। तो पहली हमार दादा पुरखा मन बर्षा रहे थी ज्यादा करे।
1: हाँ पहली करत
0: है ना बर्षा में
1: बीच में भी करत रहे सब बरगढ़ शुगर फैक्ट्री रही तो 4 एकड़ 5 एकड़ जगान और उखरा बर होले बनाते रहे फंगा में सिलिंडर बेचे बोल रहे हैं बीच में छोड़ दिन हर।
0: अच्छा
1: से फायदा नहीं हुई धान और जब डालवा जब दो फसल हुई नहीं तो ओकर पर छोड़ देने लेकिन इस साल ले फिर शुरू करें है।
0: अच्छा तो पटेल जी ये बता कि एकर खेती करे के कारण का है आप मन के।
1: एकर खेती करे के देखो धान में बार बार करत हम ज्यादा खर्चा लगा थे आई ला अभी नवम्बर में जगह हंटा अभी रस बेचे के लायक हो गई न।
0: अच्छा
1: पहले 2-3 रुपया किलो बेचत रहे।
0: अच्छा
1: अभी 8 रुपया किलो ले ली अभी घर से।
0: हाँ।
1: और अगर गुड़ भी बनाथन तो चरखा वाला गुड़ जो दुकान में मिलते और चक्की गुल्ला अमन पसंद नहीं करें बहुत जन और वो मैं ठीक से नहीं रहे बोले और जो हम देसी पद्धति चरखा से बनाथन वो हर अभी 120 रुपए किलो घर ले ले जाते हैं।
0: अच्छा
1: और अच्छा तरह से उखड़ा बनाबो।
0: हाँ।
1: जैसे नारियल अदरक।
0: हाँ।
1: तुलसी।
0: हाँ।
1: और घी।
0: हाँ।
1: लौंग इलायची दे के अगर यहाँ घर से बनाथन तो 200 रुपया किलो में ले जाते हैं।
0: वाह बहुत बढ़िया बात, ये सब कारण है कहा
1: था। हाँ ये कारण है। अच्छा। इस साल में थोड़े से बना रहे हैं तो मांग की मांग है इस गुड़ और उखरा के जो। जान दो कहत नहीं मने आओ मैं पूरे नहीं पाए इस साल उखरे बरा भी आधा एकड़ में गन्ना लगाया हूँ।
0: अच्छा
1: अभी देखो नवंबर में लगाया था अभी दस बार बेच दी हाँ एक बाद इधर फिर हो जाही खूंटी रातून।
0: अच्छा
1: खूंटी हो जाही तो इधर नवंबर दिसंबर में फिर पेरे के लायक हो जाही।
0: अच्छा अब फिर नवंबर यानी आप मन की फसल छमासी आधार में चला थे साल में दो पैंत निकल जाते।
1: हाँ दो पैंत निकल जाते।
0: अच्छा
1: और ये मिला मैं लिम खरीदे हाँ सरसों खरीदे हाँ और अपन जैविक जो केचुआ खाद है जो वो मैं दे हाँ।
0: अच्छा
1: राखड़ दे हाँ बहुत कम मात्रा अमोनियम सल्फेट ला थोड़े से दे हाँ आधा एकड़ में 25 किलो दे हाँ।
0: अच्छा
1: और बाकी एक भट्टी खाद बनाए हाँ।
0: आप मन जो खाद बोला था वो खाद की विशेषता का हवे
1: ओ खाद भट्टी खाद अगर किसान बनाए बर सीख जाही नहीं जैसे रासायनिक खाद ला हम देथन जस्ट ओकर आधा आधा खर्चा ही।
0: अच्छा अच्छा
1: जैसे जोन डोली में दो बोरा डीएपी देते हैं उसमें आधा बोरा एक एक बोरा डीएपी और बहुत सफिशिएंट हो जाए ज्यादा तीन बोरा जैसे काम करे।
0: अच्छा यानी किसान ग्रुप संगठन से जुड़ के वहाँ से देख के आप मन इला बना थका तो।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: अच्छा तो पटेल जी बता कि इला यही बचर लगा है कैसे कर है आप मन बिहद
1: स्तर में गन्ना लाई साल में लगाए। हाँ।
0: अच्छा तो अभी आप मन जो एरिया लगाया है 50 डिसमिल तो वहाँ इनकम का संभावना दिखा थे
1: उन्हें लगभग अभी 1 लाख इनकम हो जाए अभी
0: 6 महीना में का
1: 6 महीना में।
0: वाह बहुत बढ़िया बात है। तो लगा की पद्धति कैसे कैसे जुताई कर रहा कैसे प्रबंधन करता इला बताइए।
1: दो तीन बार जुताई कर था और रस्सी धर के लाइन खींचता जैसे आलू जगाते हैं।
0: हाँ हाँ।
1: वैसे
0: हाँ हाँ।
1: और मेड़ बना देते पहले आलू जैसे मेड़ और नीचे में और गन्ना ला तीन तीन टुकड़ा करके देता और ऊपर से मिट्टी ढक देता।
0: अच्छा
1: खातु वातु ला जुताई के लास्ट जुताई में दे देते हैं मस्त बढ़िया गोबर खातु केचुआ खातु ला।
0: हाँ
1: और बात तहाँ गार बना के जगह हम तहाँ पानी पलो दो।
0: तीन आँखी होना चाहिए।
1: हाँ तीन आँखी चार आँखी
0: और एक गार से दूसरे गार के बीच के चौड़ाई जगह ठौर कद का अपन
1: और
0: दो फीट के अंतराल होना चाहिए।
1: अच्छा। आलू गार ले थोड़े बड़े।
0: अब जैसे और अंकुरण होगी यानी कि पौधा के रूप में तैयार होगी पौधा तैयार होने के बाद फिर कैसे करता
1: है एक बार गुड़ाई निड़ाई करबो गुड़ाई निड़ाई करके और फिर जन खाद देना रही वो टाइम में खली देना है वो टाइम में सरसों खली।
0: हाँ हाँ।
1: और थोड़े से डीएपी या अमोनियम सल्फेट डीएपी नहीं देना चाहिए अमोनियम सल्फेट।
0: हाँ।
1: अमोनियम सल्फेट दिया नहीं।
0: हाँ।
1: तो गुड़ हर अच्छा तरह से बनते।
0: अच्छा
1: और डीएपी यूरिया दे दिया जो तहाँ और लड़ा जा गुड़ और ठीक से नहीं बन पाए जो वैली गुड़ बना था चरखा गुड़।
0: हाँ हाँ।
1: ओ हर थोड़े डीएपी एरिया दे ले नहीं बन पाए।
0: अच्छा सिंचाई प्रबंधन कैसे करता है सिंचाई कैसे करना पड़ता
1: है सिंचाई 15 दिन में एक बार 15 दिन 20 दिन में अभी गर्मी है तो अभी 10 दिन में लागत है।
0: अच्छा।
1: खातिर
0: हाँ हाँ।
1: और वर्षा महीना तो नहीं लागे कहो।
0: हाँ हाँ।
1: वर्षा महीना 4 महीना नहीं लागे
0: और खाद के बार लागते में
1: खाद जगह खानी थोड़े थोड़े दिया अभी एक बार तहा हो गई।
0: अच्छा
1: आने लगे
0: और इमा फिर और जतन करे के का दरकार पड़ते
1: जतन करे अगर बंधाई छर जतन ने आप कहा।
0: हाँ।
1: नहीं गिरना चाहिए अगर गिरी तो मुसवा काट दही गन्ना नुकसान नहीं होगी बंधाई छर एक ठीक है अभी वो जतन प्रबंध ज्यादा है ओकर।
0: अच्छा ये तो हो गया खरपतवार इमा नहीं हुए
1: खरपतवार एक बार छाया हो जाते तहा नहीं हुए।
0: अच्छा।
1: कोड़ाई निराई में घा खत्म हो जाये।
0: हाँ हाँ।
1: खरपतवार
0: हाँ हाँ।
1: और बाद छाया हो जाये तो खरपतवार नहीं जम सके।
0: अच्छा तो ये में और कुछ विशेष चीज का इमा कुछ विशेष चीज का ध्यान में रखना पड़ते गन्ना की खेती में
1: और उतके विशेष नहीं ना बना तहा पे रही चालू करा या बीज में बेच दो बीज को ले बेचा जाते और रस वाला मन तभी मांग शुरू कर दे ना।
0: अच्छा तो एक रस भी अच्छा हाथ हुई।
1: हाँ रस भी अभी की में अच्छा 6 महीना वाला में अच्छा थे।
0: हाँ।
1: एक बाद तहा फिर खुटे वाला एकादशी पर कार्तिक एकादशी पर बिक्री हो जाए तहा दिसंबर में फिर गुड़ बनाकर चालू कर देबो।
0: हाँ माने होती एकादशी तिहार में बिक्री हो जाते और गर्मी के समय में रस भर हो जाते।
1: हाँ
0: तो खूटी में भी कुछ ध्यान रखना पड़ते उन्हें
1: खूटी में और कम खर्चा लगते देखा हमारे जगह ही खर्चा हर बांध जाये गार बने खर्चा हर बांध जाये।
0: हाँ।
1: 3 साल तक हर बनते चाल खूटी हर रहते।
0: हाँ हाँ।
1: 3 साल तक हमारा जगह खर्चा नहीं लगे और में वो खर्चा नहीं लगे माने जोताई फतेई खर्चा नहीं लगे गार बने खर्चा नहीं लगे।
0: हाँ और रोग प्रबंधन में
1: रोग प्रबंधन वैसे ज्यादा अभी नहीं नजी हमें थोड़े कभू कभू लगे तो लीम खोली दे दी है ना तो जो पतन लेछा कथे।
0: हाँ
1: हाँ। वो जो गट छेदक वाला वो हर समस्या भाग जाते
0: दिमाग के प्रभाव
1: कहूँ कहूँ में रहते तो में प्रभाव आते।
0: अच्छा
1: अभी दिमाग के प्रभाव नहीं है।
0: अच्छा
1: जोन रही जगह खानिया ही
0: अच्छा
1: दिमाग के प्रभाव जगह खानिया थी।
0: हाँ तो मैं विशेष तौर से आप मतलब वाला उपचार
1: अगर छना रख ला दे दो
0: हाँ
1: तो हाँ नहीं है
0: अच्छा
1: छना रख हल्दी थोड़ी मिला के दे दियो
0: अच्छा
1: तो दिमाग खाए की संभावना यह जैविक तरीका में ही।
0: अच्छा तो लक्ष्मण कुमार पटेल जी किसान भाई मतलब का विचार देना चाहिए का कहना चाहिए गन्ना की खेती के बारे में?
1: अभी तो हर किसान थोड़े थोड़े गन्ना लगाना चाहिए गुड़बर जी देखो शक्कर में बहुत केमिकल लगा थे और अभी जति अधिकारी वर्ग हैं और बड़े सेट मड़वारी समाज मन है इवन सब गुड़ के मांग करें ना
0: और गुड़ के चाय भी आजकल
1: हाँ, गुड़ का चल प्रचलन चल किस ना
0: हाँ।
1: पहले दादा बाबा मन अरसा रोटी बनाते हैं गुड़ के गुड़ के मात्रा ज्यादा रोटी बनाते रहे
0: गुज के लिया बनाते
1: लिया बनाते रहे
0: मुर्रा के
1: लाडू बनाते रहे तो अभी जबकि शक्कर खास नहीं तो मैं शुगर की बीमारी है और 70% आदमी ला भी शुगर होगी
0: शरीर में
1: बहुत ला भी होगी से लेकिन मैं अब शुगर तो शक्कर तो नहीं खाता गुड के प्रचलन चालू कर यही मेरा संदेश है सब गुड़ के प्रयोग करें कम से कम पहले घाम महीना होले नहीं दादा बाबू मन गुड़ खा के पानी पियत रही
0: गुड़ और पानी लेते
1: गुड़ पानी और मुर्गा दें तो गुड़ के प्रचलन रही तो शुगर बीमारी हर प्रचलित नहीं रही अभी तो 70-80% व्यक्ति ला शुगर होगी।
0: हाँ बहुत बढ़िया जानकारी देवा लक्ष्मण कुमार पटेल जी एक बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम जय जोहार।
1: राम राम जय जोहार।
2: रुक जा असली नोट से क्यों खेल रहा है
3: ब्रो ये फटा है सुन फते फते आप पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा
4: हाँ
3: जिससे तू हमें पैसा पार्टी देगा
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी रायगढ़ के आप मन के चहेता कार्यक्रम हमर लोकगीत संगियो, ये कार्यक्रम में हमन सुनबो और सुनाबो आप मन ल सुघर सुघर माटी के गीत, सुघर सुघर छत्तीसगढ़ी लोकगीत। संगियो आज के ये सुमधुर कार्यक्रम में आप मन के संघावा रामविलास पटेल जो का मोड

तहाले राम राम जय जुहार संगियो हमर लोकगीत के क्रम मा पहला चिट्ठी आई से दर्रा मुड़ाले लंबोदर प्रसाद फैलेंद्र कुमार तेज राम सुरेंद्र कुमार पीयूष हेमंत कुमार कृष्ण रामदयाल तुलाराम आरिन अमान रूप बसंत मानस हरिशंकर और देवा पटेल के दर्शीवाले छेदूलाल यादव श्रीमती सीता यादव अर्चना अरुणा यादव अनुराधा अल्पना यादव दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाव यमन के संग में हमें कुमारी रानू खुशी प्रमिट साहू सी एल यादव ग्राम पंचायत बटेना ले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति और रेखा के संग में धनेश्वरी वर्मा चटौदा सारा गाँव ले सुजान वर्मा सहोदरा वर्मा आयुषी कृत वर्मा दतरेंगी ले विश्राम यदु पार्वती यदु प्रतिमा रीना यदु लक्ष्मीना यदु संग महावे लालपुर ले लुकेश यदु और समीर यदु ग्राम महासबुन खट्टी ले पसंद करता है सुभाष शर्मा छाया शर्मा कुमुदनी शर्मा ओंकार शर्मा एसोराम साहू मालती साहू लोकेश साहू छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी ले पसंद करता है द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा झावेंद्र कुमार वर्मा ग्राम बुड़गन छत्तीसगढ़ ले पसंद करता है राम दुलारी प्रजापति राम शरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशि कांता प्रजापति आवा संगियो आप सब के पसंद में सुनवो अंगना मां भारत माता के प्रीतम साहू और संगवारी के गाये सुघर गीते आवा सुनी।

भुइया कछार मा लगायो पताल संगियो सुघर गीत है अजय कुमार विजय लक्ष्मी वर्मा के युगल स्वर में गीत हावे और पसंद करता हावे लुकाऊ पाली छतवन जिला बलौदा बाजार ले पुनीत राम सूर्यवंशी निर्मला सिंह निहारिका सिंह पंकज सिंह सूर्यवंशी एवं सबो हावे पुतकी कला कवर्धा ले राधे श्याम पांडे वीरा पांडे विनय शंकर पांडे आर्य नगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंगेल मोरस जंगेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष नंदिनी जंगेल धमदा ग्राम सुकरी कला ले अमित जंगेल शकुन जंगेल आरुषी ओसिका आदित्य जंगेल के संग मां अंजलि जंगेल पलारी छत्तीसगढ़ ले नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग टेलर पूना राम कृष्णा देवांगन चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले हमर नियमित श्रोता पवन कुमार सेन जी प्रभा देवी सेन लक्की बिक्की नानू और रविंद्र रौनक सेन सहसपुर लोरमी ले छोटकू साहू मोहित राम साहू लोकेश साहू राम किशन साहू दुली चंद और बड़कू साहू दुर्गेश साहू डोंगरगांव छत्तीसगढ़ ले पसंद करता हमें राष्ट्रपाल गजबीय राधिका गजबीय अनिष्का तन्मय बिलाईगढ़ ले रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता और डिंपल देवांगन करी बदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर शारदा निर्मलकर गीतिका कुमारी लोचन विद्यार्थी गिन्नी लल्ली और भूमि आवाज सुनी आप सबके पसंद मा ये सुमधुर गीत ला।

ओली के चिट्ठी ला खोली संगवारियों माया वैद के स्वर हावे पसंद करता हवे रानीगांव नगरी जिला धमतरी ले किलेश कुमार साहू चित्र रेखा साहू शुभम सेजल साहू अनूपपुर मध्य प्रदेश ले जय मंत्री केवट कृष्णा केवट हटौद बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर पटेल राजकुमारी पटेल कर्मा चौक लोहरी डी ले पसंद करता है कवर्धा छत्तीसगढ़ ले अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी ललिमा खुशांत और निशांत साहू मिठ्ठूमुड़ा दुर्गा चौक ले नियमित श्रोता हवे गेंद लाल श्रीवास कौशल श्रीवास बिहारी पटेल लक्ष्मी बरेड लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई कमल बिहार रायपुर रतन जैन कोकिला जैन वैभव जैन चिराग जैन रोहासी ले गौरव साहू नूतन साहू डगेसर राम साहू घनश्याम साहू बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ ले हमारे नियमित श्रोता हमें रामचंद माखीजा काफिर भाई श्रीमती सविता माखीजा बेबी स्वाति माखीजा महेश कुमार कुकरेजा संध्या कुकरेजा माही पूजा छुटकी और शरद कुमार डोडवानी हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगाले रमेश कुमार यादव श्रीमती माया यादव रिंकू सन्नी कोमल यादव बाजार पारा बेमेतरा ले भाई भरत लाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा देवरी भाटा पारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश मिस्त्री जेल रोड रायगढ़ ले भाई नरेंद्र कुमार तिवारी हटरी चौक बिलाईगढ़ ले खीक राम देवांगन रेनू देवांगन रजनी के संग में पिंकी देवांगन आवा संगी सुनी ये सुमधुर गीत ला।

बरस भाई के रसिया दरस नहीं है। धुरवा राम मरकाम और दुखिया बाई के युगल स्वर में सुनबो संगवारी हो ये सुमधुर गीत ला और पसंद करता हवे धमनी राजीम ले सम्मेलाल धीवर मुन्नी धीवर गोविंद धीवर ममता कुणाल और युवांश धीवर मदनपुर कवर्धा ले श्रमण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू अटल रेडियो श्रोता संघ वार्ड बी सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले नारायण लाल कुलवंतीन देवी दिवेंद्र प्रताप नेहा देवी मिलिंद कुमार प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू नांदघाट कातल बोर्ड ले भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री राजपूत टीकेश्वर और रितु राजपूत माँ महामाया चौक मेघापरा ले राम कुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल दिव्यांजलि पटेल दीपक पटेल टेकलाल पटेल और छोटकू साहू धरदेव सरगांव ले छत्तीसगढ़ ले चंदूलाल पटवा श्रीमती सुनीता पटवा हर्ष कुमार पटवा विनीत कुमार और कुमारी क्रिस्टी पटवा रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा भागवत प्रसाद पदुमलाल दिवांगन सुनैना पिंकी यश शीतल मामा प्रियांश तानवी नीता चंद्रबत्ती युवराज गीता घासी मामा सलाम रामचंद्र जी देवांगन समस्त देवांगन कुटुंब परिवार कोष्टा पारा जुड़वा चौक सरंग पाल ले मन चिट्ठी लिखी ने शिवाजी चौक राजीम ले पत्र लिखी ने अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव अमरपुर पेंड्रा ले दीपक कुमार रोशन कुमार बंसीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा रोही दिव्यांश और लबी श्रीवास्तव आवा संगियो आप सबों के स्वर में सुनबो ये गीत ला।

तन्नू रजक टानिया रजक नित्या रजक अडार नान गाटले माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी भूपेश और दीपेश वर्मा लोरमी सारिस ताल ले हावे रामजी पटेल सीमा पटेल अंजू पटेल अनुष्का पटेल अक्षिता पटेल नयागंज वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ विष्णु साहू पूरब साहू वीरा साहू हर्ष साहू कुमकुम साहू और योगेश्वरी साहू राम भाटा संजय मैदान रोड रायगढ़ ले हावे रोहित जयलक्ष्मी अंश लक्ष्मी महमायापारा ग्राम दरचूरा ले फिरंता साहू दुलोरिन साहू कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू मयंक रेडियो श्रोता संघ नावागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांता वर्मा सीमा शारदा दामिनी वर्मा बेमेतराले सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी ग्राम दरचूराले ददुआ साहू भोरी साहू रेखा मोतीलाल साहू यही गीतला पसंद करीने पटेल नगर मलोट पंजाब ले रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया बेबी आरजू जाजोरिया तो संगियो आवाज सुनी आप सबके पसंद मा ये सुघर गीतला परस राम यदु के स्वर मा।

0: छत्तीसगढ़ी लोकगीत ले सजरी से आज के हमर लोकगीत के क्रम जेमा माटी के महक रही से कर्मा सुवा ददरिया के तार रही से और आप मन के मन पसंद के सुगर सुगर गीत रही से संगी वो घड़ी के सुई हर इशारा करत है कि आज के हमर लोकगीत के बेराला अब थिरावा तो संगी वो फिर भेंट हो ही और आप मन के पत्र ईमेल ला जरूर शामिल करबो अवैया समय में। तब तक देहू मोला विदा, राम राम, जय जुहार। संगवारी हो हमर क्रम एक विशेष क्रम रहते कृषक प्रश्न मंच के। तो संगी हो आज के प्रश्न हावे पशु मन में टीकाकरण कराना काफर जरूरी हावे। पशु मन में टीकाकरण करवाए ले का लाभ होते या टीकाकरण करवाना काफर जरूरी हावे एकर उत्तर लिख भेजिया। और आप मन के डहार से कृषक प्रश्न मंच के जो उत्तर लिख भेजे रहता संगवारी हो एला शामिल करबो अवैया बुधवार के हरेक बुधवार के 7:30 बजे संझा के बेरा। संगवारी हो अब चला हमर नसीहत के डहार जाबो तो मछली सब बदक पालन तकनीक ला अपनावा कहत हैं। तो संगियो मछली और बदक पालन बहुत ही बढ़िया दोनों के तालमेल रहे थे और ये तरीका ला तकनीक ला अपना करके हमन लागत ला आधा और मुनाफा ला दुगुना कर सकत हन। एक दूसर के मन पूरक के रूप में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जैसे बदक ला पाले हन तो मुफत में खाद मिलते, प्राकृतिक भोजन मिलते, बदक के जो मल रहते बीट रहते वह तालाब में तरिया में गिरते जिला मछली खाते उपभोग करते और मछली भोगाते जी। यानी कि एक प्रकार से प्लैक्टन यानी मछली पर जो प्राकृतिक भोजन होते वह तैयार होते तो ऐसे एक दूसर के रूप में काम आते और पानी में ऑक्सीजन ला बढ़ाते वह तैरते अपन पैर ला एती ओती करते तो ओकर से भी। और एक चीज और भी होते संगवार जो जब तालाब में तैरते तो और जो हानिकारक कीड़ा रहते वो ला अपन चोंच ले भी खा लेते तो एकर से भी होते। और हमर इमे का होते ऑक्सीजन के प्रवाह भी बढ़िया होते एकर से हमला एरेटर लगाए काम नहीं करे एरेटर के काम हेर करते। कीट और खरपतवार नियंत्रण भी हो जाते ऊपर ऊपर में जो सवाल रहते घास फूस रहते तेला अपन प्राकृतिक आहार बना लेते तो ऐसे करके पूरक आहार के रूप में भी ये काम करते। तो संगियो अगर बात करते हैं तो मछली सा बदक पालन में तो बहुत ही अच्छा प्रजाति के हमला चयन करना चाहिए। मछली में अगर करते हैं तो सतह में जो रही थे संगवारी मछली एमा सिल्वर कार्प कतला है ये मल्ला हम ले सकत हन और मध्य मा जो मृगल है कामन कार्प एला ले सकत हन। तो ऐसे अलग अलग ले सकत हन जैसे कि बात करते हैं तो ये में मुख्य रूप से संगवारी हो सिल्वर कार्प है कतला है रोहू है मध्यम मृगल कामन है ये खलिया के यानी खाले के सतह के भाग में इमन अच्छा से विकास करते हैं। इंडियन रनर है या खाकी कैपवेल है ये जो नस्ल है बदक के ये मतलब आप मन प्रजाति मतलब चयन कर सका था। आप चला संगवारी कार्यक्रम में आगू बढ़ी और सुनी एक भेंट वार्ता सरसमाल विकास खंड लैलुगा के कृषक राम प्रसाद पटेल जी से हमारे बातचीत हो रही से जब गेर हैं तो कि गाय बकरी पालन करके कैसे आजीविका से जुड़े थे और आत्मनिर्भर बनते हैं आवाज सुनिए मन के बातचीत ला। संगवारी को आप मन सुना था किसान वाणी कार्यक्रम और किसान वाणी कार्यक्रम में भेंट वार्ता के क्रम रहते और ये क्रम में हमन किसान भाई ले भेंट करा था। सबले पहली किसान भाई ला राम राम जय जोहार।
1: राम राम जय जोहार।
0: का नाम है जी तुम्हारा?
1: राम प्रसाद पटेल।
0: कहाँ के?
1: सारसमा।
0: कौन विकास खंड?
1: लैलुंगा।
0: लैलुंगा तो रायगढ़ जिला ले कतका दूरिया में है? रायगढ़ ले
1: 100 किलोमीटर।
0: 100 किलोमीटर की दूरी में है। का खासियत है आप मन के क्षेत्र में? का उत्पादन होते, का का पालन होते?
1: हमारे एरिया में ज्यादा धान पान होते।
0: अच्छा अच्छा।
1: बकरी ज्यादा बकरी है एरिया में।
0: अच्छा अच्छा। कतका बकरी रखे हैं?
1: हम 3 ठे रखे हैं, बस्ती में बहुत है, 2-3 ठे।
0: अच्छा अच्छा। लेकिन तुम्हारा उन्नत नस्ल के है तो बकरी पालन ला कतका दिन कर रहा था?
1: बहुत दिन से सा।
0: कैसे लागत है?
1: उन्नत होते तो राखे खोज खोज के ले
0: मजा आते कहा तो
1: कम से कम 1 ठे राखे से रहते।
0: अच्छा अच्छा।
1: 2-3 बार हुई प्लांट में आता ना प्रदर्शनी में तो पहला चाहता।
0: अच्छा अच्छा। प्रदर्शनी में पहला चाहता?
1: हाँ, साल रायगढ़ में हो रही थे पहला है। हाँ। में तो पहला है।
0: अच्छा अच्छा। यानी आप मन बढ़िया जतन करता खवाता पियाता ऊपर पर तो कैसे खवाता पियाता बतावा
1: थोड़ी देता
0: पैर कुटी देता। अच्छा तो के टाइम देता कैसे देता?
1: गाय गाय जिसने खाना देते।
0: अच्छा।

0: 9 बजे खाना देथन गाय मन ला इसने आप दाना खरीदो जो है तेरा देथन और दोपहर में वो 3 बजे खाना खाना पीना देथन जी
1: दो तीन पैन देथा कहा तो
0: और बहुत टाइम ज्यादा है
1: तो गर्मी के समय में तो पशु मन ला जैसे आप मन के बकरी है तेला विशेष ध्यान रखना पड़त हुई
0: हाँ
1: कैसे करता बचाओ बस गर्मी ले
0: पानी है
1: पानी पिला था धोता अच्छा अच्छा अच्छा राय बोले था कि नहीं
0: नहीं एक दिन नहीं मैं अकेला हूँ साहब बाल बच्चा है छोटे छोटे था आपने कमा होता कोने कर
1: कमाए बल लागते है ना पालन पोषण करना भी है तो ये बताया कि जैसे बकरी के संगे संगे का रखे आप मन
0: गाय छे थना उन्हीं है
1: गाय के ठना है
0: दो ठी है
1: का नस्ल के है
0: साहिवाल
1: साहिवाल अच्छा तो गोरस कद का हो जाते
0: एक थे 8-10 लीटर दे थे अभी
1: 8-10 लीटर तो बढ़िया तो गोरस दे थे जी फिर तो बेचता कहाँ मेला
0: लेवंगा में पनीर में था
1: पनीर बना के ओहो तो पनीर में ज्यादा फायदा है
0: अकेला में डेली जा नहीं सकूं साहब
1: हाल
0: बाल नहीं होन बहुत ही आया था और ओका घर ओका दा जाना अच्छा नहीं हुई तब पनीर ला दो दिन एक दिन में लेके देते था
1: अच्छा तो हिसाब से बात करते हैं तो 10 लीटर में या 3 दिन में कद का आप मन के पनीर निसर जाते
0: आ तक नहीं हिसाब यहाँ साहब
1: नहीं जैसे बेचे पर जाता तो कद का किलो बेचता
0: और 4-5 किलो हो जाते
1: कद का दिन में जाता
0: 3-2 दिन
1: अच्छा
0: जिस दिन जरूरत काम पर ले लूंगा आना जाना रहते ले जाता निबंधा 3 दिन के ले जाता निबंधा 4 दिन के ले जाता
1: तो पनीर बना कैसे करता कैसे गोरस ला डबका था ना कैसे डबका था का करता
0: पनीर ला सब गोरस गंजिया में डाल देते साहब
1: हाँ
0: गर्म करथन
1: हाँ
0: गर्म होने के बाद में अब समय थे
1: हाँ
0: हाँ खट्टा पानी डाल था
1: अच्छा नींबू
0: नहीं नहीं
1: अलग से खट्टा
0: अलग से ओकर पानी है
1: अच्छा अच्छा पनीर के जो पानी निचले रहते थे रखे रहता हाँ
0: हाँ और पनीर पानी में खटा था
1: अच्छा तो और फिर बन जाते
0: हाँ
1: बोला फिर तो बढ़िया जमाए बर एक प्रकार से चिकन करे बर एक प्लेट बनाए बर रोटी जैसे बनाए बर लागते
0: हाँ तो वाला एक ठीक कढ़ाई में डाल देते हाँ
1: हाँ
0: जाली वाला में
1: हाँ
0: उसमें कपड़ा लगा देते हाँ
1: हाँ
0: कपड़ा में सब निथो दे था सब खाली होते ना कपड़ा अगल बगल चारों तरफ संकल लेते ऐसे पानी में से वही पानी में गर्म पानी में ऐसे ऐसे गिना देते जो
1: अच्छा अच्छा
0: चिकना है धन आप कैस करो बांध था ना धन प्लेट वहाँ
1: कछू ला लग देता
0: प्लेट लागू लगा देवो
1: हाँ
0: अगर मैं छोटे से जाता
1: हाँ
0: मैं चीप देता
1: अच्छा अच्छा तो चिकन होके बढ़िया रोटी जैसे बन जाता
0: हाँ
1: तो बढ़िया लगा थे कहा तो पनीर बनाया था तो
0: हाँ तो पनीर
1: तो खाए पिए में भी तो मजा आते
0: हाँ तो खाए पिए भजन छोटे छोटे बच्चा है तब जे दिन खाबो कहीं ते दिन बन ले था
1: हाँ तो बकरी पालन और पशु पालन लाभ के साधन है कहा तो
0: हाँ।
1: और पनीर उत्पादन करा था तो यार भी बढ़िया है गोरस ला बेचे जा नहीं सका था तो किसान भाई मन पनीर बना के भी आमदनी ले सका था
0: हाँ।
1: तो राम प्रसाद पटेल जी रेडियो सुनने वाला श्रोता संगवारी मन का कहना चाहिए आप मन का विचार रही आप मन
0: पशु पालन का चाहिए बढ़िया साधन होना तो
1: पशु पालन लाभ के साधन है कहा तो
0: हाँ।
1: चलो बढ़िया लगे राम प्रसाद जी सुघर जानकारी देवा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है राम राम जय जवान
2: तो संगवार देखा कैसे किसान से हम सुनत रहन कैसे प्रसंस्करण करके अपन के उपज के उत्पादन के बढ़िया लाभ लेते हैं ऐसने संगी हम प्रसंस्करण से अगर जुड़थन तो लाभ होते अब देखा हमारे टीप के गोट के विषय हावे कि जब तालाब टांका और टैंक बनाए संगियो देखा समय मांग है जरूरत है दरकार है शहर हो या नगर हो या गाँव हो सबो जगह हमला करना पड़ी जल के संरक्षण जल ओकर नियंत्रण यानी जो बर्बादी हो थे ओकर पूर्ति बर हमला तकनीक लगाना पड़ी जल संरक्षण में सक्रियता दिखाना पड़ी एकर बर आपन जल संरक्षण के काम करना चाहता तालाब बनाना चाहता तो स्थान के चयन कराओ ऐसे ठाउर के चयन कराओ जहां पानी हर वर्षा के पानी हर आके प्राकृतिक रूप ले ओथर जाते यानी सब पानी हर वहाँ आके जमा हो जाते और चिकना माटी रहे तो एकर से का है नीचे में पानी झन पसीजे एकर अलावा आप मतलब आकार गहराई के बात करथन तो 100 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा और 10-12 फीट गहरा खुदाई वाले जो तालाब रहते वाला आदर्श माना जाते सरकार बहुत सारा योजना के तहत तालाब गहरीकरण पर तालाब मरम्मतीकरण पर पैसा अनुदान और सहायता दी थी एकर पर आप मन गांव के सचिव सरपंच मन से संपर्क कराओ योजना के लाभ लेवा संग में आप मतलब हमन ध्यान आकृष्ट कराना चाहबो कि आजकल के जो है संगवारी हो काहे घर रहते या घर के ऊपर जो अग्रहा पानी रहते वो पानी के हमला सदुपयोग करना पड़ी। एकर बर आप मन का कर सकत संगवारी हो, एक तो है आप मन का कर सकत है रूप टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक एला भी अपना सकत है, और संग में हमला एक विशेष तरह से संगवारी हो प्रयास ना पढ़ी पानी हर कैसे में बांचे। एकर बर जब तक हमन पानी के महत्व ला नहीं समझबो, संरक्षण कोती आगू नहीं बढ़बो, तो अवैया संगवारी हो हमला एकर विकट समस्या देखे बर मिली। कोई किसान मन तो संगवारी हो अपन के खेत मा डबरी तालाब ला एकरे बर बनाते हैं ताकि बोर हर सूखा गीस या बोर मा कभू लाइट के सप्लाई नहीं हुईस या वो ट्यूबवेल जल गीस तो ओ बेरा में ओ पानी के उपयोग कर सकन। तो ऐसने अगर हमन प्रयास करबो तो संगवारी हो हमर अवैया समय में पानी के समस्या हर नहीं हो। एकर अलावा संगवारी हो आज हमन सुरता हमारे के पूर्व प्रधानमंत्री राजनीतिज्ञ चौधरी चरण सिंह जिला जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहिन है और ये मतलब किसान मन के मसीहा के नाम से भी जाना जाते। संगी हो बात करथन तो आज इमन के पुण्यतिथि हावे 29 मई 1987 में इमन के निधन हो रही से। इमन देश के पांचवा प्रधानमंत्री रहे और भारतीय राजनीतिज्ञ रहे और विशेषकर ग्रामीण और कृषि व्यवस्था में इमन के बहुत अच्छा प्रयास रही से सुधार में, चाहे किसान मन के ग्रामीण क्षेत्र में जो अधिकार के बात करन या जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बात करन, इमन में इमन के भरसक प्रयास रही से एकर से लेकर के जो है उत्तर प्रदेश में कई ठन विकास कार्य भी हो रही से। इमन के समय में जमींदारी उन्मूलन के काम हो रही से। संग में इमन ला 28 जुलाई 1979 में और 14 जनवरी 1980 तक, यानी 28 जुलाई 1979 ले 14 जनवरी 1980 तक इमन देश के प्रधानमंत्री रहे। इमन की ईमानदारी, सादगी और भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ इमन के जो रही से इमन के बहुत अच्छा छवि रही से। देश के किसान मन पर इमन के किए गए जो ऐतिहासिक प्रयास रही से कार्य रही से इला हमेशा सुरता किए जाते। और इमन के जन्मदिन ला यानी संगवारी हो 23 दिसंबर के दिन ला मनाया जाते राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में, और भारत सरकार डहले ओमला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न ले भी सम्मानित किया गे रही से। तो ऐसन महान राजनीतिज्ञ ला पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ला उनके पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि अर्पित करतन, नमन करतन, सुरता करतन और वंदन करतन। संगियो देखा का हमन तो उधारी ले लेथन, उधारी लेना अच्छा बात भी है लेकिन ओला समय में चुकाना भी बहुत ही जरूरी है। एकर पर हमर एक वाक्य है अपनी साग बढ़ाएं समय पर कर्ज चुकाएं। संगी हो ये वाक्य कथन बहुत ही सटीक और सार्थक हावे, चाहे क्षेत्र हो या बैंकिंग के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में संगवारी अपन के साख ला बनाए रखे बर जो समय में हमन कर्जा ले रहन लोन ले रहन ओकर किस्त ईएमआई ले चुकाना अब्बड़ जरूरी हावे। हमर जो एक क्रेडिट स्कोर बनते साग बनते जो सिविल स्कोर भी कहा जाते ओकर से भी हमला संगवारी हो आघू लोन या ऋण के उपलब्धता होते। तो एकर बर साग ला बरकरार रखे बर संगवारी हो हमर क्रेडिट स्कोर ला बढ़िया रखे बर समय में ऋण के भुगतान या अदायगी करना जरूरी है। समय में अगर आप भुगतान करिए तो आप उनके सिविल स्कोर भी बढ़िया रही, और देरी ले भुगतान करिए तो बहुत सारा नुकसान है। काहे एक किस्त चुकाहा दूसरा ला लेट में चुकाई है तो ब्याज भी ज्यादा लगी और आप मन के स्कोर हर भी क्रेडिट स्कोर हर भी साख के स्तर हर भी संगवारी हो गड़बड़ा ही। तेकर बर आप मन समय में ऋण ला चुकावा और समय में ऋण ले चुकाई है तो संगवारी को कम ब्याज देना पड़ी। अब यह समय में आप मला जल्दी से जल्दी आप मला लोन या ऋण मिल जाए, अप्रूवल मिल जाए। समय में कर्ज चुका तो मानसिक रूप ले थकान और संतुष्टि नहीं रहे, मानसिक रूप ले थकान नहीं रहे और आत्मसंतुष्टि रही। संग में आप मला जब भी संकट के समय में ऋण के दरकार पड़ी तो बैंक वाला भी आप मला ऋण देहे बर आनाकानी नहीं करे। संग में संगवारी हो जानकारी भी हमला रखना है, एड्स की जानकारी ही बचाव के उपाय हावे। एड्स यानी संगवारी हो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो ला कहा जाते, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस जो ला कहा जाते, ये संगवारी हो संक्रमण ले हमार शरीर हर कमजोर हो जाते, एकर से कई प्रकार के रोग बीमारी भी होते। तो हमन जानत हन कि एकर कारण का होते, संक्रमित व्यक्ति के संग असुरक्षित यौन संबंध है, संक्रमित खून के आदान प्रदान ले एक ही सुई या सीरिंज के एक ले दूसर मन के मा उपयोग करे ले और ऐसे कई ठन ऐसे कारण हावे संगवारी हो जेला हमन जानत हन तो एकर से हमला बचे के प्रयास करना पड़ी और कई ठन भ्रांति भी है वो भ्रांति ले भी हमला धुरिया करना पड़ी ओकर संग हाथ मिलाए ले ओकर संग खाए पिए ले ऐसे जो है एड्स सर नहीं फैले संग ये तो हमला ध्यान रखना है कि सुरक्षित यौन संबंध बनावा और जो भी संसाधन है ओकर उपयोग करा और हमेशा जांचा परखा हुए संगवारी हो रक्त आदान प्रदान कराओ और जब भी रक्त के आदान प्रदान किए जाते तो संगवारी हो रक्त के परीक्षण जरूर करावा और रक्त के जांच जो है कहा होते निःशुल्क मा पहली किए जाते रक्त के जैसे हम आदान प्रदान करते हैं तो बेरा होकर परीक्षण भी किए जाते तो ये सबला आप मन देख ताक के आगे बढ़ाओ तो संगी हो जाए के बेरा होते आज के कार्यक्रम लिए विदा ले के तो आप मन के संगवारी रामविलास पटेल देव विदा राम राम जय जुहार।

आप सुन रहे थे यह केंद्र है। लीजिए अब सुनिए गीतों का कार्यक्रम।

0: गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया की आवाज में समीर का लिखा ये गीत।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

इसके साथ ही गैर फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है, आइए अब सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे आदमी खिलौना है इस फिल्म में अलका और मोहम्मद अजीज को।
1: आकाशवाणी सुन रहे सभी श्रोताओं कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि बेहरा है और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। आकाशवाणी रेडियो समाचार पत्र के बाद संचार साधन का दूसरा माध्यम ही नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने का भी दूसरा माध्यम है। रेडियो ने दूर दराज गांव को नेटवर्क से ऐसे कनेक्ट किया जैसे आज के टाइम में इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप ने। उस टाइम पे तो ये सारी चीजें नहीं होती थी लेकिन फिर भी रेडियो ने लोगों को देश दुनिया की खबरों से बहुत अच्छे से जोड़ा। सखी सहेली, आपकी फरमाइश, बहुत सारे कार्यक्रम, किसानवाड़ी पे चर्चा, मन की बात, सभी कार्यक्रमों ने लोगों को बहुत ही जल्दी एक दूसरे से जोड़ दिया। और रेडियो न सिर्फ न्यूज के लिए बल्कि बहुत सारी नई जानकारियों के लिए भी बहुत ही आवश्यक था। समय के साथ अब रेडियो का क्रेज थोड़ा कम हो गया है बट आज भी लोगों को रेडियो सुनना शायद उतना ही आरामदायक लगता होगा जितना हमारे अभी के जनरेशन में इंस्टाग्राम में फेसबुक चलाना है। तो आप सभी को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न

वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेब्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म प्रेम ग्रंथ के लिए आवाजें थी विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की। इस गीत अब समाप्त होता है। एफएम रायगढ़ केंद्र है। आप 45 मिनट होने वाले हैं, थोड़ी संध्या कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: @gmail पर हमें भेज सकते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मुख्य समाचार। और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसान प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
3: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।

0: भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। एनएबीएल प्रमाणित लैब वहां उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्य तंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक

0: व्यवस्था स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Home Minister Amit Shah announces major shift in border management, leveraging technology and four-

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में है। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में सुनिए हमजोली फिल्म का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में मजबूर फिल्म का गाना। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुकेश की आवाज में मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना, गीत शैलेंद्र का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों, ये गाना फिल्म जलवा का है, जिसमें पंकज कपूर ने अल्बर्ट पिंटो की भूमिका निभाई थी। याद होगा आपको 1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, पंकज कपूर है आज के फनकार।

0: आइए पंकज कपूर की अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मकाम होता है। हाँ, उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था लेकिन काफी मेहनत और काफी अरसे के बाद। और शौक लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, तो मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो जिंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने ही पता किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया और उसके बाद का मेरा सफर थिएटर और टेलीविजन और सिनेमा का शुरू हुआ।

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

राष्ट्र नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी है, वहाँ पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल। फिल्म में प्रेजेंस थी ज्यादा, परफॉर्मेंस को बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला, वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी की डबिंग की गई है बेन किंग्सले के रोल की, वो मैंने की थी उस वक्त। तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको, और सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए। और 22-1 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज के जरिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम जरूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था या पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का। हालांकि इस काम को करने की वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

पंकज कपूर ने तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान अब्बाजी का मकबूल किरदार अदा किया था। फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, याद होगा आपको।

0: छोटे पर्दे के लिए भी कुछ यादगार भूमिकाएं पंकज ने निभाई हैं। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं हैं। आप हैं तो पंकज कपूर ही, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं, उस वक्त लोगों को ये ना लगे कि आप पंकज कपूर हैं। तो वो एक हल्का सा धागा जो है आपके और आपके कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है, और वो बनाए रखना जरूरी है। अगर ना रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, या फिर आप इतने उसमें डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कर तो आप अभिनय ही रहे हैं ना।

0: जो गाने हम आपको पंकज कपूर अभिनीत फिल्मों से सुनवा रहे हैं, वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगे राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलनी नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है, और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के ज़माने में, आज भी लोग हैं, लेकिन वो कहानी चूँकि 40s की थी तो उस ज़माने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसका अपना बिहेवियर, उसकी अपनी एम्बिशंस और ये सब चीज़ें दर्शाने में बड़ा ही एक अलग किस्म का लुत्फ महसूस हुआ। और एक और टेलीफिल्म मैंने की थी जो भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उसको केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट किया था, किसी एक फूल का नाम लो। उसमें पाठक नाम का एक राइटर है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की। तो ये कुछ रोल हैं जिनको करने में बड़े मजा आए।
0: 1991 में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी कमाल किया था पंकज कपूर ने। भूमिका थी डॉक्टर दीपांकर रॉय की।
1: तपन सिन्हा साहब जो डायरेक्टर थे डॉक्टर की मौत के, उन्होंने राख फिल्म ही देखी थी और उसी को देखने के बाद उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। अब तपन सिन्हा साहब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े जाने माने, बहुत सी फिल्में, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बंगाल में, बंगाली में बना चुके हैं, और लेकिन मेरा इसरार हमेशा से जैसे कि स्क्रिप्ट पे रहता है, तो स्क्रिप्ट मुझे उन्होंने मुहैया करवाया, मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं करना चाहूँगा, तो ऐसे उस फिल्म में दाखिला हुआ मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शबाना इसमें दूसरा रोल कर रही हैं, फीमेल कैरेक्टर कर रही हैं, और करीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी बंगाल में, ज़्यादातर काम कलकत्ते में था और कुछ चांदीपुर में, कुछ दिनों का आउटडोर था। तो शबाना बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बड़ी ही अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी रही, और तपंदा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे निर्देशक हैं जो अपने अभिनेता को बहुत सी छूट देते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं उसके लिए जिसमें वो अच्छा अभिनय कर सके। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इस फिल्म के अंदर थी जिसको लेकर के कुछ डॉक्टर्स थे वहाँ कलकत्ते के लोकल, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज वगैरह दिया गया, जो कि इस किरदार को निभाने के लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी था।
0: थिएटर के दौरान पंकज ने नाटक एक रुका हुआ फैसला में बेहतरीन काम किया था। आगे चलकर इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी।
1: उससे पहले हमने एक नाटक किया था एक रुका हुआ फैसला नाम से, तो उसके जो डायरेक्टर थे वो मेरे मित्र भी थे जिनके साथ मैंने सबसे ज्यादा काम थिएटर में किया है, रंजीत कपूर साहब, वही इस फिल्म को लिख रहे थे। तो जब कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, और दरअसल मैं फिल्म में ओरिजिनली जो रोल ओमपुरी साहब ने किया है अहूजा का, वो करने वाला था, लेकिन बाद में तनेजा का रोल जो कर रहे थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो इन लोगों ने बतौर दोस्त मुझसे कहा कि भाई इसकी बजाय अगर तुम ये रोल ले लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो मुझे कोई एतराज नहीं था क्योंकि मुझे तो अभिनय करना था। तो इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा जरूर मैं आप बताना चाहूंगा। उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में जा रहे हैं, और उस वो बड़ी खतरनाक किस्म की लिफ्ट थी क्योंकि एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी, और तो शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ 20वें माले पे थी, तो वहीं जो बिल्डर साहब के बेटे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लद के ऊपर चले चलते हैं और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर जाएगी लैंडिंग पे, वहां से आप उतर के फिर नीचे 2 फ्लोर उतर के चले जाइएगा। तो करीबन 20 लोग उस लिफ्ट के अंदर चढ़ गए मेरे मना करने के बावजूद, लेकिन उसने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वेट तो चली जाता है। और फिर जब लिफ्ट 5वें-6वें माले तक ऊपर गई तो जाके वहां हवा में अटक गई और हम सब लोग 20 के 20 लोग हवा में लटक रहे थे, और ये बिल्डर साहब का बेटा भी हमारे साथ था। जब वो लिफ्ट वाले से कहता था कि भाई इसको ऊपर लो तो लिफ्ट वाला बाएं देखने लगता था, जब उससे कहता था नीचे लो तो दाएं देखने लगता था। फिर कुछ देर वहां लटकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी तरह से बिल्डिंग के पास ले लो, तो जब बिल्डिंग के पास लिया गया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई भगदड़ ना मचाए, और एक एक करके आराम आराम से उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबने भगदड़ मचाई। और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई मरा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग और उस लिफ्ट के दरमियान करीबन एक फुट का फासला था। जब हम उतर के ऊपर लिफ्ट वाले के पास पहुंचे और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि तार कट रहा था, आधे से ज्यादा तार कट चुका था। अगर वो ऊपर की तरफ खींचता तो भी टूट जाती लिफ्ट, अगर वो नीचे की तरफ फेंक जाने देता हमें तब भी लिफ्ट टूट जाती और हम सब लोग मर जाते। तो ये एक हादसा उस फिल्म का जरूर मुझे याद है, जो जिंदगी भर याद रहे।
0: 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर को। याद होगा इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक हैं ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास BA LLB, वाह भाई वाह, साहब जी, बीवी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी कामयाबी हासिल की थी। गुलजार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के टीवी रूपांतरण में होरी की एक यादगार भूमिका भी पंकज कपूर ने टीवी पर अदा की थी, आपने जरूर देखा होगा।

सन 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म 10, आपने जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म 10 में। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की 3 फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, डब्लू अम्ब्रेला और हल्ला बोल में भी पंकज नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011 में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम था चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। ये तो आप जानते ही हैं कि जाने माने स्टार शाहिद कपूर के पिता हैं अभिनेता पंकज कपूर, जो निर्देशन में भी अपना कदम जमा चुके हैं। शाहिद को उन्होंने निर्देशित किया फिल्म

दोस्तों, फिल्मकार विशाल भारद्वाज की मशहूर फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला में भी आपने पंकज कपूर के अभिनय का जलवा जरूर देखा होगा।

0: तो ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने एक्टर पंकज कपूर पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल की आवाज में समीर की रचना।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

विविध संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हजरत मोहानी की लिखी गजल, आवाज थी गुलाम अली की। लीजिए सुनिए कुमार सानू और साधना सरगम का गाया गीत, गीत लिखा है समीर ने।

जफर गोरखपुरी की लिखी गजल आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में। कार्यक्रम के आइए अब सुने अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में समीर का लिखा ये गीत।

अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए इस गीत के साथ ही विविध संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुने फिल्म जानी दुश्मन से आशा भोसले की

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा?
6: पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, मंदी की बात किए रे?
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

सुलक्षणा किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अपनापन में। कार्यक्रम का आप सुने फिल्म त्रिशूल से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत का साहिर और संगीत खयाम का है।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में फिल्म मुक्ति का ये गीत। इस गीत के साथ ही रजनीगंधा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।